0: offices of Omar Khwaja
1: in association with Passion Health Primary Care.
2: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में सब संभाल लेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
2: 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, गर्ल हिंदी हिंदी बोल।
6: यू नो माय वॉइस ऑन द रेडियो, नाउ लेट मी बी अ वॉइस यू कैन ट्रस्ट इन रियल एस्टेट। मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। बाइंग, मूविंग और सेलिंग अ होम, आई ब्रिंग मार्केट नॉलेज, क्रिएटिव मार्केटिंग एंड पर्सनल कमिटमेंट टू योर जर्नी। बिकॉज टू मी रियल एस्टेट इजंट जस्ट अबाउट प्रॉपर्टीज, इट्स अबाउट यू मेरे दोस्तों, योर पॉसिबिलिटीज एंड योर न्यू बिगिनिंग्स। Every home has a story. Let's create yours together.
5: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
2: Phone uthaiye, number dabaiye.
6: 347-449-4242.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
8: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
8: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
9: हे, आर यू गोइंग टू रवि'स ट्रेड मार्केट दिस ईयर?
5: ऑफ कोर्स, वेयर एल्स कैन यू चेक आउट न्यू प्रोडक्ट्स, मीट वेंडर्स, ग्रैब एक्सक्लूसिव डील्स, गिव अवेज एंड सेव बिग फॉर योर स्टोर।
9: व्हेन इज इट?
5: थर्सडे अक्टूबर 29th, फ्राइडे अक्टूबर 30th एंड सैटरडे अक्टूबर 31st फ्रॉम 9 AM टू 5 PM एट रवि'स इम्पोर्ट वेयरहाउस ऑन हैरी हाइंस बुलेवार्ड इन डैलस।
9: परफेक्ट, आई विल रजिस्टर अहेड ऑन shopravis.com. रवि'स 21st एनुअल ट्रेड मार्केट, बिगर डील्स, बिगर opportunities, bigger business.
10: Customers must bring their valid tax number and tobacco license. Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
11: भाई मैं आपका हाल चाल मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल दिया, मुझे लगता है वो 7 बजे वाला ब्रेक मैं भूल ही गई थी कि वो भी होना होता है। यू गाइस, आज तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, आई होप यू डिडंट मिस मी, और इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी ही आपका हाल पूछ लिया।
12: क्या ख्याल है आपका,

भाई अगर आपको वैसे ही गाने और पसंद हैं देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई एंड कम टू माई शो विच इज़ गोइंग टू बी एट द एंड ऑफ दिस मंथ विच इज़ 30th of October एंड इट्स गोइंग टू बी एट स्टीव्स वाइन बार इन डेंटन. येस आई लव दैट प्लेस. इफ यू लाइक डेंटन आई लव इट बिकॉज आई वेंट टू स्कूल ओवर दैट. इट्स सच अ ब्यूटिफुल म्यूजिकल टाउन. हमेशा वहाँ पे कोने कोने पे ना परफॉर्मेंसेज होती रहती है वेदर इज द समर और द फॉल. एंड दे ऑल्सो हैव दिस इनक्रेडिबल डेंटन आर्ट्स एंड जैज फेस्टिवल जो अभी कुछ टाइम पहले ही गुजरा. तो या डेफिनेटली कम 30th of October आई एम गोना प्ले एट स्टीव्स वाइन बार. एंड अगर ऐसे ही गाने आपको सुना है बिकॉज वी प्ले लाइक 10 माय बैंड विच इज़ द डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ. वी प्ले लाइक 7 decades ऑफ हिट्स बेसिकली एंड इट्स गोना बी अ रियली गुड शो. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सिंग अलॉन्ग सो इफ यू नो द वर्ड्स टू इट यू कैन सिंग अलॉन्ग टू इट. यू जस्ट यू डोंट हैव टू कम एंड सिट लाइक यू नो जस्ट कम एंड सिट देयर. यू कैन सिंग अलॉन्ग विद अस एंड वी लव इट एब्सोल्युटली. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स कंटिन्यू दैट सॉन्ग बिना उस गाने को स्पॉइल करे हुए उसको खत्म करते हैं.

आपको ये वाला इस वाले गाने का वीडियो याद है, व्हेन मुमताज इज ड्रेस्ड इन हर ब्यूटिफुल ऑरेंज सी साड़ी एंड देन शमी कपूर इज डांसिंग, वो उसको पटा रहा है, वो दूर भाग रही है, वो प्रेम के साथ अपना रोमांस बना रही है, यू नो प्रेम ही था ना उसका नाम, नहीं प्राण चोपड़ा, प्राण चोपड़ा सॉरी, प्राण चोपड़ा के साथ अपना रोमांस बना रही है ऐसे ऐसे करके। तो आपको याद है इसमें डांस, इसमें वीडियो में जो इनका डांस था वो कैसा डांस था? डू यू थिंक दैट डांस हैड अ मूव? बिकॉज ऑल इट वॉज डूइंग लाइक शेकिंग, चिकी चिकी चिकी चिकी, लाइक दे वर डूइंग द शिमी थ्रू द होल सॉन्ग, एंड नॉट जस्ट द टू ऑफ देम बट एवरी वन, लाइक इट इज़, आई डोंट नो वॉट दैट डांस मूव इज कॉल्ड, लेकिन उस टाइम पे जो डांस मूव्स पॉपुलर थे, ट्विस्ट पॉपुलर था, मैश पोटेटो पॉपुलर था, दीज आर ऑल डांस मूव्स बाय द वे, एंड दे गॉट यूज अ लॉट, चार्ल्सटन वॉज पॉपुलर, बट आई डोंट नो इफ दिस वन एक्चुअली हैड अ नेम और नॉट, आई थिंक वी कैन जस्ट कॉल इट द शिमी, है ना, जो यू जस्ट शेक योर हेड, शेक योर बॉडी एंड जस्ट गो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इट वॉज सो फनी एंड सो आइकॉनिक। भाई अगर आप ही को ऐसे वैसे गाने सुनने हैं एंड यू वॉन्ट लिसन टू मोर ऑफ दीज सॉन्ग्स, वी देन यू शुड डेफिनेटली कम टू माई शो ऑन October 30th। मैं आपको रिमाइंड कर दूंगी बाद में, थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी के लिए अगर आप अपना घर बनाने की सोच रहे हैं देन यू नीड टू रीच आउट टू ड्रीम होम मॉर्गेज, क्योंकि 1998 से दे हैव हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री विथ पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशन, चाहे आप वो बाय कर रहे हैं, रीफाइनेंस कर रहे हैं, कॉल 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com, ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन। तो डोंट वरी, यू शुड जस्ट गिव देम अ कॉल एंड डोंट थिंक अबाउट इट। दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू जिमरान, क्योंकि जिमरान इज स्टिल रिक्वेस्टिंग बारिश के गाने, भाई अगले 2 दिन तक बारिश होने वाली है तो व्हाई नॉट।

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
3: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
4: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं.
4: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं.
4: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं.
4: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
12: कितनी लंबी लिस्ट है?
11: बस 2 पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी.
12: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो. SFL वर्ल्डवाइड है ना, इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
13: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड. विजिट SFLWorldwide.com.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
14: क्या मतलब?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
16: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gro Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gro Pravesh India Property Expo by My Square Feet.

भाई लकी लिप्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अगर आप अपना लक चाहते हैं आजमाना रिगार्डिंग बाइंग अ हाउस, देन बिसाइड्स गोइंग टू ड्रीम होम मॉर्गेज, यू नो व्हाट यू कैन आल्सो ट्राई, देर इज एक्चुअली अ रियली कूल इवेंट दैट्स हैपनिंग. इट्स द प्रॉपर्टी एक्सपो इन फ्रिस्को. इट्स कॉल्ड गृह प्रवेश, ऑन इट इज स्पेल्ड लाइक गृह प्रवेश, लेकिन हम उसको बोलेंगे क्योंकि हमको हिंदी आती है, संस्कृत आती है, हम उसको गृह प्रवेश बोलेंगे. दैट्स द करेक्ट वे टू से इट. ओके, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय योर ड्रीम हाउस और यू आर लुकिंग अ स्मार्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, बाय द वे दिस इज फॉर पीपल हु आर वॉन्टिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, देन यू कैन विजिट द गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो प्रेजेंटेड बाय माई स्क्वायर फीट, द बिगेस्ट इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो इन फ्रिस्को. मीट लीडिंग डिवेलपर्स ऑल द वे फ्रॉम बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, एंड एक्सप्लोर ओवर 200 एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ. यू कैन जॉइन देम ऑन अक्टूबर 10th एंड 11th फ्रॉम 10 AM टू 8 PM एट द हायत रीजेंसी इन फ्रिस्को. एंट्री फ्री है, पार्किंग भी फ्री है. योर परफेक्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया कुड बी वेटिंग फॉर यू एट गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो. I think this is a good opportunity for people who have some extra cash lying around, and if you're looking to invest, you know, India is going to change like in the next 10 years or something in terms of property. Property is वैसे बहुत high हो गए. I think this is a great opportunity if you want to invest, and you know, India ke taxes bhi I think US se to kam hote hain, so definitely, definitely try it.

are back. Yes, this is Ippy the Hippie, and you are still listening to Funasia Radio 104.9 FM, and this is my show, An Evening in Dallas. भाई आज आप लोगों का लगता है लकी डे है, क्योंकि आज हमारे पास एक नहीं दो दो गिव अवे हैं. तो सेलिब्रेट नवरात्रि. तो पहला गिव अवे तो जो नॉर्मल वाला है वो हम 8 बजे के बाद खेलेंगे, लेकिन उसके पहले जो हम गिव अवे कर रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल. यस, अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस नवरात्रे के या हॉलिडे वाले सीज़न में कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाएं, और इस बार शायद आप गर्मियों की छुट्टी में इंडिया नहीं जा पाए टू गेट योर ईयरली डोज ऑफ लहंगाज एंड साड़ीज एंड एवरीथिंग फॉर द नवरात्रि, एंड यू हैव टू बाय स्टफ फ्रॉम हियर, वेल दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली विन वन. वेल, यू कैन सेलिब्रेट नवरात्रि विद अ फैबुलस न्यू लुक फॉर एवरी सिंगल नाइट. एक्सप्लोर द स्टनिंग कलेक्शन ऑफ स्टाइलिश कंटेम्प्रेरी छनिया चोलीज अलॉन्ग विद कस्टमाइजेबल वेडिंग एंड ब्राइडल वेयर for both men and women only at Indian Ethnic Wear by Jyotika Patel. And where is her shop located? In Irving. Call 945-444-2194 or visit jyotikapateldesigns.com. Aap kya jeet sakte hain from this giveaway? You can win a beautiful pair of earrings from Jyotika Patel Designs. Mention the brand and the largest Navratri collection.

Which I am doing, by the way. I'm gonna tell you, they've got the largest Navratri collection, and they are located in Valley Ranch in Irving. तो गिव अवे सिर्फ अगले 15 दिन तक वैलिड है. आई विल टेल यू हाउ टू विन इट. भाई, आई एम गोना प्ले यू अ सॉन्ग. मतलब इट्स अ वेरी फेस्टिव सॉन्ग, वेरी इजी. ये वाला इजी सा गेम है. मतलब बिल्कुल कुछ मुश्किल भी नहीं करना है. अंताक्षरी भी नहीं खेल रहा है. मैं आपको एक गाना बजा के दे रही हूँ. आपको मुझे उस गाने का मूवी का नाम बताना है. दैट्स इट. वेयर इज दिस सॉन्ग फ्रॉम? एंड दैट्स इट. इट्स अ सुपर सुपर सुपर सिंपल गिव अवे. एंड क्योंकि नवरात्र का टाइम है, तो लेट्स प्ले समथिंग विच इज राइट फॉर द ओकेजन. माई नंबर इज 9722355555.

0: Hi, can you hear me?
1: Yes, I can.
0: Okay, good. पहले तो अपना नाम बताइए and then tell me what movie is that song from.
1: जी, मेरा नाम अंकित अग्रवाल है and movie का नाम है काईपोचे.
0: Nice, congratulations, Ankit. आप जीत चुके हैं आज का giveaway from Jyotika Patel Designs. Maybe if you have a girlfriend or a mom or a sister, whoever is in town, you can give them these beautiful.
1: I have a wife.
0: Oh, there you go. Perfect opportunity.
1: Well, and two daughters.
0: Amazing. They can all wear it one by one. One, everyone on a different day. One person on a different day. तो आप जीत चुके हैं ब्यूटीफुल पेयर ऑफ इयररिंग्स फ्रॉम ज्योतिका पटेल डिजाइन्स. गाइस, आप लाइन पे बने रहिए अंकित. आई एम गोइंग टू प्ले द सॉन्ग एंड देन आई विल टेल यू योर इन्फॉर्मेशन एंड यू गाइस कैन एंजॉय द सॉन्ग इन द मीन टाइम.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
3: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
4: दिल की बात किससे कहें?
5: पंडित गुरुदेव से। 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 4695811777। दैट्स 4695811777। पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए।
6: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
7: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
6: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
7: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
8: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
9: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
8: Barista House, richness of biryani bliss.
10: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
11: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
12: That garba was totally worth it.
3: Scope will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
13: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
14: Subah Drive pe.
15: You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio.
16: Dopahar phone par.
17: I don't listen to Spotify. I listen to Fun Asia Radio.
14: Shaam ko ghar par.
0: You are listening to Fun Asia Radio.
14: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
16: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक, and with Smart Reach AI, take your business to local customers while tracking calls, bookings और visits. A 360 degree advertising solution for your business, so customers can hear about you, see you and connect with you.
11: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
16: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
18: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.

guys, we are back. Yes, this is Ippy the Hippie and you are still listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Bhai, time hai hamare giveaway khelne ka, and as you know, our giveaway is very fun and very simple. We call this the word Antakshari. Yes, aaj ka giveaway hai kahan se? It is from the Chandigarh Whites, of course. Chandigarh Whites, they are located off of McDermott Drive in Allen. Try their special thali from Monday to Friday with exciting new dishes which rotate daily, only for lunch वैसे. For all listeners, ये आपके लिए है. Please make sure कि आपने ये particular जो giveaway है पिछले एक महीने में नहीं जीता है. You can only be a winner once a month here, okay? तो अगर आप मतलब हमारे साथ कई बार ऐसे भी होता है कि जिन लोगों की कॉल एक बार लगती है उनकी कॉल बार बार लगती रहती है. सो इफ़ यू हैव वन द गिव अवे इन द लास्ट वन मंथ, वैसे महीना तो अभी शुरू हुआ है टेक्निकली, अक्टूबर तो आज 1st October है, सो इट वॉन्ट काउंट, बट येस इन फ्यूचर देन रिमेंबर यू कैन मे बी सेव द गिव अवे फॉर समथिंग मोर फन और नॉट, मे बी यू कैन जस्ट डू दैट. तो हियर इज योर चांस टू विन $10 ऑफ ऑफ अ $50 बिल. तो आपको $50 खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको $10 ऑफ मिलेगा फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गो अहेड एंड प्ले दिस गेम. आई एम गोना प्ले यू अ सॉन्ग एंड देन यू हैव टू पिक एनी वर्ड फ्रॉम दैट मुखड़ा and then sing me another song related to that, okay? Sing me another song just from this word. तो हमने कल भी खेला था, परसों भी खेला था, इस पूरे हफ्ते हम वही खेल रहे हैं. My number is 9722355555. Let's go ahead and play this game. If I can find my mouse, there we go.

0: इसमें से कोई भी वर्ड उठा सकते हैं फॉर द गिव अवे. और लेकिन साथ में गाना भी पड़ेगा. ओके एंड वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर, लेट्स सी. हाय कैन यू हियर मी?
1: यस.
0: ओके पहले तो अपना नाम बताइए एंड देन यू हैव टू सिंग द सॉन्ग.
1: अमित बोल रहा हूँ मैं. एंड आई विल पिक दिल दिल वर्ड.
0: हाँ
1: दिल क्या करे जब किसी से. कैन यू हियर मी?
0: या
1: ओके आई लॉग इन स्टार्ट.
0: ओके.
1: दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए.
0: क्या बात है. नहीं नहीं बस बहुत है. मतलब आपकी आवाज भी बड़ी अच्छी है वैसे तो. आई वुड से दिस बट ठीक है. आपको गाना है तो आप जरूर गा सकते हैं लेकिन फॉर अस यू हैव सैटिस्फाइड आवर रिक्वायरमेंट्स. ओके वेल कंग्रेचुलेशंस अमित जी. प्लीज स्टे ऑन द लाइन. आई एम गोइंग टू व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक योर इन्फॉर्मेशन. लेकिन उसके पहले मैं ऑडियंस के लिए ये गाना लिसनर्स के लिए गाना बजाती हूँ एंड देन यू शुड स्टे ऑन द लाइन. ओके
1: Okay.
0: Okay, guys, enjoy the song. We'll see you.

0: फ्रेंड्स, वी आर बैक. जैसे मैंने आपको बोला था, हाउ टू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन. नाउ, पहली चीज, इन माई ओपिनियन, दिस इज समथिंग दैट वी आर नॉट टॉट इन स्कूल, अनलेस एंड अंटिल यू आर डूइंग अ डिसिप्लिन इन कॉलेज वेयर यू हैव टू डू लाइक रिसर्च. एंड आई डोंट मीन लाइक सिटिंग इन अ लैब एंड डूइंग रिसर्च, आई मीन लाइक गोइंग आउट एंड टॉकिंग टू पीपल, पीपल हु डू लिबरल आर्ट्स. बेसिकली अगर आप सोशियोलॉजी कर रहे हैं, साइकोलॉजी कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, वेयर यू हैव टू एंगेज विद पीपल एंड हैव दैट कॉन्वर्सेशन, आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉट दिस स्किल. दैट स्किल, माई फ्रेंड्स, इट इज़ कॉल्ड द स्किल ऑफ लर्निंग. हम मैंने बहुत लोगों को देखा है, स्पेशली फ्रॉम आर साउथ एशियन कम्युनिटी, वेन समबडी स्टार्ट्स टॉकिंग, इवन इफ दे अग्री विद द पर्सन, एंड दिस इज नॉट जस्ट टू हैव अ डिसअग्रीमेंट और दिस इज नॉट जस्ट टू हैव एन आर्ग्यूमेंट और एनीथिंग, इवन इफ यू अग्री विद समवन, हम लोग इंटरप्ट कर देते हैं कॉन्वर्सेशन के बीच में. लाइक इफ समबडी इज सेइंग समथिंग लाइक, ओ यू नो आई वेंट टू दिस, दे स्टार्ट लाइक, या आई हैव बीन देयर, इट्स सो नाइस. मतलब यू मे बी सेइंग समथिंग नाइस, यू मे नॉट बी एक्चुअली सेइंग समथिंग बैड, और यू मे नॉट एक्चुअली आर्ग्यू विद देम, यू आर एक्चुअली अग्रीइंग विद द अदर पर्सन, बट बिकॉज आपने उनके बात के बीच में वो बात काट दी ना अपनी वाली, तो देन दैट शोज दैट यू आर नॉट अ गुड लिसनर. वेन यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड पार्टनर, स्पेशली वेन पीपल आर लुकिंग इन दीज डेज, पीपल आर मोर अवेयर ऑफ दीज स्मॉल लिटल डिटेल्स, पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द पर्सन हु लिसन्स.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com. एलविंग वालो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
3: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
4: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट एस्ट्रोलॉजर ईश्वर.
5: It's the time to crack out. It's the time to catch up.
6: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
7: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
3: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
7: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
8: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Pan Asia.
7: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales, or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual, and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

तो गाइस, जब ये सब में बातें हम करते हैं, डोंट फॉरगेट कि आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन भी फायर मत करिए, बिकॉज समटाइम्स दैट कैन फील लाइक एन इंटरव्यू, राइट? यू डोंट वांट टू बी ऑन अ डेट एंड द अदर पर्सन थिंकिंग कि यार ये इतने सवाल क्यों कर रहा है, इज दिस लाइक एन इंटरव्यू और समथिंग, रिमेंबर दोज थिंग्स ऑल्सो. तो आगे बढ़ते हुए गाइज, इफ़ यू नीड हेल्प विद योर टैक्स, अकाउंटिंग, पेरोल, इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर और एन इंडिविजुअल एंड यू नीड हेल्प विद एनी ऑफ दिस, देन यू रीच आउट टू AG FinTax, कॉल 4699429888 और विजिट AG FinTax.com.

धूम पिचक धूम, धूम पिचक धूम. वेल दिस इज द ओरिजिनल धूम पिचक धूम आई वुड से, बिकॉज ये धूम पिचक धूम के पहले आया था ये वाला गाना. हाउ एवर यू गाइज, आई लव इट व्हेन ऑल माय लिसनर्स हु आर लिसनिंग टू ऑल दिस ज्ञान दैट आई गिव ऑन द रेडियो एंड दे एक्चुअली टेक सम ऑफ द एडवाइस एंड एक्चुअली गो एंड एक्चुअली यू नो इट एक्चुअली वर्क्स फॉर देम. तो आई जस्ट हैड अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई रेगुलर लिसनर्स. अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने बोला है प्लीज़ अनोनिमस रखना. तो मैंने कहा बिल्कुल एब्सोल्युटली वी रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी. तो ही सेड कि क्योंकि हम इतने सारे कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे हाउ टू अप्रोच वेमेन, हाउ टू अप्रोच वेमेन एट अ रेगुलर प्लेस, यू नो इट डजन हैव टू बी थ्रू अ डेटिंग ऐप, इट कैन बी इन पर्सन. आई लाइक टू थिंक दैट आई एम डूइंग सम गुड इन दिस सोसाइटी बाय शेयरिंग ऑल दिस. सो ही एक्चुअली हैड द कॉन्फिडेंस एंड द करेज टू गो टॉक टू समवन एट अ कॉस्को. यू गाइज कैन यू बिलीव इट? येस, इफ यू आर टायर्ड ऑफ द डेटिंग एप्स एंड जीवन साथी एंड भारत मैट्रिमोनी एंड यू नो यू जस्ट मे बी जस्ट वॉन्ट टू मेक अ फ्रेंड एंड फॉर ऑल यू नो जस्ट गो टॉक टू समवन एट योर कॉस्को. एंड ही अप्रोच्ड हर एंड ही सेड हे दैट्स अ नाइस बैग एंड शी सेड या इट्स लुई विटों एंड देन ही वॉज लाइक इज इट. देन द जोक्स केम आफ्टर. सो द थिंग इज he did not have to learn any conversation skills because he followed up with that. He goes like, so is this from China or France? And that actually worked. She laughed and they are going out tomorrow. Okay, so this is not a lie. I just got a call literally like 5 seconds back. So guys, agar aap bhi aise koshish kar rahe hain to go and talk to someone, it doesn't matter if you're a guy or a girl. Even a girl can approach a guy like that. Hey, nice shoes. And just have start a casual conversation like that. And for all you know, you could have a date on a Friday night and you won't be sitting alone watching, I don't know, reruns of some show. Ya phir doing something for your boss that you really don't want to do. You know, go enjoy, go have some fun, right? Or that's how we kind of progress in the world, right? So, aage badhte hue, guys, I love it. I love it when you share your stories with me because I can share it to the rest of the audience and everybody can get confidence also with that. So, please feel free to give me a call and let me know if anything of this works. Moving on, Texas Primary Care. Pichle 13 saal se, they have cared for our community. Now they have a brand new fresco location. It's called Lenoxi Medical and it's founded by Dr. Mandeep Acharya. They have primary care, urgent care, in-house lab testing, x-ray, CT scans, aur bhi bahut kuch, all under one roof. They are open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. aur aapko koi appointments ki zarurat bhi nahi hai. We will continue our conversation on how to continue the conversation. how ironical is that? So, lekin uske pehle ye dhumpichak wala ye gaana khatam karte hain.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
2: कीमा पराठा।
3: मम्मी ऑमलेट पराठा।
4: बेटी हलवा पूरी और तरकारी।
1: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
5: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99। अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड। विजिट signaturecuisine.net.
6: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
7: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
8: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
9: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
8: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
9: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
7: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
10: ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर इंप्रेशंस, कैंपेन का रिजल्ट?
11: योर ऑनर, हजारों लोगों ने एड देखा।
10: मिस क्लिक्स?
0: 100 लोगों ने क्लिक भी किया।
10: कस्टमर्स कितने आए?
12: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
6: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Funasia Network product.

भाई आई नो दैट सॉन्ग इज नॉट अ बारिश का सॉन्ग, लेकिन एवरी टाइम आई लिसन टू दैट मुझे पता नहीं बारिश वाली फीलिंग बड़ी आती है उस गाने में. तो एक चैलेंज करते हैं गाइस, ठीक है? क्योंकि हमने इतनी सारी बातें करी दिस होल वीक. वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, हाउ टू अप्रोच पीपल, हाउ टू जस्ट बी गुड एट कॉन्वर्सेशन, राइट? सो इट इज द फर्स्ट ऑफ द मंथ, 1 अक्टूबर शुरू हो चुका है. गिव योर सेल्फ अ 30-day चैलेंज. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया. आई केम अप विद दिस आइडिया एंड आई थिंक मे बी इफ यू गाइज वॉन्ट टू ट्राई इट आउट, डेफिनेटली ट्राई इट आउट. दिस इज नॉट जस्ट रेलिवेंट फॉर पीपल हु आर जस्ट लुकिंग फॉर डेट्स और एनी थिंग लाइक दैट. दिस विल अप्लाई टू एनी थिंग एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. वेदर यू वॉन्ट अ गुड गेट गुड वेदर यू वॉन्ट अ गेट गुड एट इंटरव्यूज, कॉन्फिडेंस, जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, यू नो, जस्ट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, दिस विल कम हैंडी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ओके, सो द चैलेंज इज हम 1 महीने का चैलेंज करते हैं जिसमें वी टेक एवरी वीक वी टेक वन एस्पेक्ट एंड वी ट्राई एंड गेट बेटर एट इट. ओके, सो वीक वन गेट गुड एट बींग कंफर्टेबल विथ कन्वर्सिंग विथ स्ट्रेंजर्स. सो और जस्ट लाइक ग्रीटिंग अ स्ट्रेंजर, फॉर एग्जाम्पल यू स्माइल एंड ग्रीट 3 strangers एवरी सिंगल डे एंड जस्ट मेक इट लाइक अ टास्क. इट डजेंट इवन हैव टू बी नेचुरल. इट आई मीन ऑनेस्टली इफ एट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट्स गोन अ गेट नेचुरल. सो जस्ट स्माइल एट लाइक 3 people एंड जस्ट बी लाइक स्माइल एंड ग्रीट, हे हाउ आर.

गाइस, दिस इज इपी द हिप्पी. इट इज टाइम फॉर मी टू गो. लेकिन जाने से पहले, आई नो एआई इज टेकिंग द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, एंड देयरफॉर वी हैव समथिंग नोन एज स्मार्ट रीच एआई. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस ओनर्स. भाई, एट दिस पॉइंट इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी पीपल आर सीइंग योर बिजनेस और हाउ मेनी पीपल आर क्लिकिंग ऑन योर एड एंड ऑल दैट. इट्स अबाउट हाउ मेनी पीपल एक्चुअली बिकम कस्टमर्स. वो लीड्स जब एक्चुअली सेल्स में बदल जाती है, दैट्स वॉट मैटर्स. Meet Smart Reach AI. This is a Fun Asia Network product. Fun Asia has come up with this that helps you reach potential local customers, even those who are visiting your competitors across the radio, digital TV, streaming TV and online audio. Then measure what truly matters: calls, bookings, offers, redemptions and actual visits to your business. Visit smartreach.ai.us and turn your local attention into customers. I think, guys, if you're a restaurant owner or something, this is a great idea. Definitely check it out. You can use AI to market your business. Chahe wo Google ke first page pe search results ho ya jo bhi Google optimization ho ya jo bhi hai, wo sari cheeze they are going to help you out with. All right? आज के लिए बस इतना ही. आई विल सी यू ऑन मंडे विथ सम मोर कॉन्वर्सेशन. तब तक के लिए बाय गाइज. हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ योर वीकेंड.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अब क्या?
1: क्लॉस्ट्रोफोबिया। व्हाइट हाउस की कैंटीन में स्टोर पहुंच गया, प्लीज चेक।
2: अच्छा, कौन सा वो हाइड्रोजन बम वाला?
3: सर, कोर्ट में बात कीजिए।
2: अशरथ, सिक्योर लाइन है, प्लीज डोंट इरिटेट मी, नहीं तो अभी वो ट्रिगर दबा दूंगा। हाँ, फाइनल चेक्स एवरीवन, शाफ्ट सील करने का वक्त आ गया है, कम ऑन, गेट रेडी।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

और जब तुम उसकी बारात में क्रैश लैंड हुई टल्ली हो गए। उस दिन कॉलेज वाले प्यार से फॉरएवर वाला प्यार हो गया तुमसे। बाय गॉड।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

0: Bringing South Asia closer, more closer. Fun Asia, 104.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beta, 95% aaye?
5: हाँ मम्मी.
4: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
6: मेरा?
4: हाँ. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, सारे accounts updated.
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
9: Kabhi chatpata sa twist, kabhi tikha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
8: Jahan har flavor करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज.
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
10: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
9: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट. पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार. सिर्फ फनी शो रेडियो पर.

रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, हमें साथ रखिए। मंजिल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे, हमें साथ रखिए। आपका साथी, आपका हमसफर, हर पहर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो। हम रखते हैं आपको एंटरटेन्ड एज वेल एज इनफॉर्म्ड 24/7 365 डेज अ ईयर। दिस इज फनीशिया रेडियो। स्टे ट्यून्ड।

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीता बल्ला, लाओ।
1: गीतों से मियां तानसेन, कानों में शहद तो भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो एक रेट लगा रखते हो, भूख लगी है, भूख लगी है। लाओ दबा।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे, उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं
1: दिया? मैं कहां इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की ऐसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Funasia Radio. चांद ने कुछ कहा.

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

0: सब कुछ सीज कर लो।
1: एक टीम को कोऑपरेटिव बैंक भेजो और वो लॉकर्स भी सील कर लो। अभी क्या रेशमा इंडस्ट्रीज और सूरज राइसमिल के सारे बैंक अकाउंट सील कर दो। सेल्स टैक्स और एक्साइज की बहुत बड़ी चोरी है। उन डिपार्टमेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो।
2: The Magic 24/7 only on 104.9 FM.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

कुड़ी अट कुड़ी अट कुड़ी चाकू तलवार ये छुरियां कुड़ी आदि गवर्नमेंट कर दे नमस्ते ब्लॉन्ड लट्टी नते चिटियां हाय कुड़ी मल कुड़ी मजा मजा लल कुड़ी सॉल्टी स्पाइसी ते मिठियां।

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: सुबह ड्राइव पे
2: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो। दोपहर फोन पर
3: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो।
1: शाम को घर पर
4: यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
1: योर कस्टमर्स आर एवरीवेयर, तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
2: फन एशिया नेटवर्क के साथ कस्टमर्स तक पहुंचे रेडियो से डिजिटल तक, एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स व्हाइल ट्रैकिंग कॉल्स, बुकिंग्स और विजिट्स। अ 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, सो कस्टमर्स कैन हियर अबाउट यू, सी यू एंड कनेक्ट विद यू।
1: टू एडवर्टाइज कॉल 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net।
2: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
5: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: रुको जरा, सबर करो।
4: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। Stay tuned to Phonesia.

आपके सुहाने सफर का साथी फनीशिया रेडियो।

0: bringing the community together. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: आकर

0: आओ
1: मसकली आओ आओ मसकली आओ आओ आओ आ जाओ बच्चा।

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts, they see.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: सुबह ड्राइव पे
1: यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो दोपहर फोन पर
2: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो
0: शाम को घर पर
3: You are listening to Fun Asia Radio.
0: Your customers are listening. पर क्या आपके बिजनेस की आवाज उन तक पहुंच रही है?
4: Business, products या services? Let Dallas hear about you. Advertise on Fun Asia Network in Hindi, Tamil, Telugu or Punjabi and connect with your customers in their own language.
5: From radio spots to live RJ mentions, let your business become a familiar name on their favorite station.
4: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
5: Fun Asia Network. Be heard. Be remembered. Be chosen.
6: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
7: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट टैलेंट में रेडियो का टैग फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.
2: हम दिल के बुरे नहीं बस एक खराबी है आदत से नहीं।

मार्शमेलो, नाम तो सुना होगा।

0: अब तेरी बात।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: तेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Subah Drive Pe.
4: You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio.
5: Dopahar Phone Par.
6: I don't listen to Spotify. I listen to Funny Share Radio.
7: Shaam Ko Ghar Par.
8: You are listening to Fun Asia Radio.
9: Your customers are everywhere. तो आपका business सिर्फ एक जगह advertise क्यों हो?
10: Fun Asia Network के साथ customers तक पहुँचे radio से digital तक, and with Smart Reach AI, take your business to local customers while tracking calls, bookings or visits. A 360 degree advertising solution for your business, so customers can hear about you, see you and connect with you.
9: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
10: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
11: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? MMA बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it.

variety is the spice of our station. 104.9 FM.

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
2: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
3: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है, लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
1: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com।
2: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस, कैंपेन का रिजल्ट।
3: योर ऑनर, हजारों लोगों ने ऐड देखा।
2: मिस क्लिक्स,
4: 100 लोगों ने क्लिक भी किया।
2: कस्टमर्स कितने आए?
5: एविडेंस फाउंड, एक्चुअल कस्टमर विजिट इज लेस देन 10।
4: मार्केटिंग में क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स मैटर करते हैं। विद स्मार्ट रीच AI, रीच लोकल कस्टमर्स, इवन कम्पेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो, डिजिटल, स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो। मेजर कॉल्स, बुकिंग्स, रिडेम्पशंस एंड एक्चुअल विजिट्स। विजिट smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Fun Asia Network product.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: एलविंग वालों, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
2: Yaar, festival season aa raha hai. और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
3: कितनी लंबी लिस्ट है?
2: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
3: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
0: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
4: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पास या बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
6: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
7: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
8: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
3: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी। जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: Order, order. Mr. Impressions, campaign का रिजल्ट।
14: Your Honor, हजारों लोगों ने ऐड देखा।
13: Miss Clicks,
15: 100 लोगों ने क्लिक भी किया।
13: कस्टमर्स कितने आए?
16: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
15: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.

0: we will play what the songs that y'all are requesting right here on the airwaves of the Fun Asia Network. This is your morning drive time special. Thank you very much for letting me into your cars and helping you drive to your destination carefully this morning.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: अरे यार, घर मिल गया।
4: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
2: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
4: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैश बैक भी।
2: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम। Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
5: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
2: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
5: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
6: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
7: That garba was totally worth it. We had so much fun.
8: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
7: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
9: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
10: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
11: सुबह ड्राइव पे
12: यू आर लिस्निंग टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो।
13: दोपहर फोन पर
14: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फन एशिया रेडियो।
2: शाम को घर पर
15: यू आर लिस्निंग टू फन एशिया रेडियो।
2: योर कस्टमर्स आर लिस्निंग। पर क्या आपके बिजनेस की आवाज उन तक पहुंच रही है?
16: बिजनेस, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, लेट डैलस हियर अबाउट यू। एडवर्टाइज ऑन फन एशिया नेटवर्क इन हिंदी, तमिल, तेलुगु और पंजाबी एंड कनेक्ट विद योर कस्टमर्स इन देयर ओन लैंग्वेज।
2: फ्रॉम रेडियो स्पॉट्स टू लाइव आरजे मेंशंस, लेट योर बिजनेस बिकम अ फैमिलियर नेम ऑन देयर फेवरेट स्टेशन।
16: टू एडवर्टाइज कॉल 469-424-3188 और ईमेल sales@funasia.net।
2: फन एशिया नेटवर्क, बी हर्ड, बी रिमेंबर्ड, बी chosen.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gruh Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gruh Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
4: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
0: Huzoor, aapko chunna hoga, hum ya ye biryani?
5: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
0: Aakhir kya hai is biryani mein?
5: Dam mein narmi, masalon mein jadu aur har niwale mein nawabi swaad.
6: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabad flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts, and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
3: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
6: Barista House, richness of biryani bliss.
3: Are you seeking clarity in life, wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
3: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
7: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
8: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
9: कितनी लंबी लिस्ट है?
8: बस 2 पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
9: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
10: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाए विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
11: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
12: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.
13: तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब दिल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले खिले।

8 minutes past 10 o'clock, you're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Rumita and you're listening to Gup Shup Gully. Yaar, Friday hai aur October ka first weekend bhi, and I have one small request ki is weekend ko bhi Monday ka waiting room mat bana dena. हम कभी कभी दो दिन को इतना ओवर प्लान कर देते दैट संडे नाइट तक वीकेंड भी एक प्रोजेक्ट लगने लगता है. सो टुडे नो लॉन्ग आइटिनररी, गिव योर वीकेंड जस्ट वन हेडलाइन, मे बी फैमिली टाइम, फुल ऑन रेस्ट, अच्छा खाना, कोई अच्छी नई जगह, कोई अलार्म नहीं, या सिंपली देखेंगे, लाइक हैशटैग और कोट एंड कोट देखेंगे बट पीसफुली. So, opening question to मेरे प्यारे DFW वासियों, अगर क्योंकि you know this question is related to the Friday feel, the weekend feel, तो मैंने सोचा कि अगर आपको आपके ये जो weekend plans है या weekend को एक movie title देना पड़ा तो क्या होगा. मेरे कारण और मेरे मुताबिक ये title सही है, रही जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या फिर दिल धड़कने दो. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. पार्क करके मुझे बताना. वी आर स्टार्टिंग फ्राइडे विथ म्यूजिक दैट साउंड्स लाइक द लैपटॉप इज ऑलरेडी क्लोज्ड.

0: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
2: ये तारा वो तारा हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
3: क्या मतलब?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
5: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: दिल की बात किससे कहें?
7: पंडित गुरुदेव से। 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 4695811777। दैट्स 4695811777। पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए।
8: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशंस का कलर,
9: नेक्स्ट क्वेश्चन।
8: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
9: याद नहीं।
8: बफे में क्या था?
9: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
1: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 972-905-5449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर।
10: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
11: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
12: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
13: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
12: Miss Clicks?
14: 100 logon ne click bhi kiya.
12: Customers kitne aaye?
15: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
16: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.

10:27 by the studio clock. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gup Shup Gully with me, Ramita. और इस शो को जब मैंने शुरू किया तो मैंने एक सवाल पूछा था अपने DFW लिस्टर्स से कि अगर आपका वीकेंड एक मूवी टाइटल होता तो क्या होता. बहुत लोगों ने कॉल किया. दो कॉल्स जो इंटरेस्टिंग लगे वो ये थे. पूजा ने कहा कि यार मेरे वीकेंड का टाइटल होगा कभी खुशी कभी गम. मतलब खुशी मतलब पार्टीज तो चलती रहती है और गम आता है ढलता है संडे को जब मुझे अगले वीक के लिए प्लान करना पड़ता है. सो कभी खुशी कभी गम फॉर पूजा. एंड द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कॉल दैट आई गॉट वाज फ्रॉम अ फादर. हिज नेम इज गौरव. उन्होंने कहा कि यार एक डैड होने के नाते एंड अ फादर ऑफ टू चिल्ड्रेन उनकी मूवी उनके वीकेंड का नाम होना चाहिए दंगल. दो बच्चे हैं और वीकेंड भर उनकी एक्टिविटीज चलती है. लाइक एक तो इधर ड्रॉप करो दूसरे को उधर ड्रॉप करो फिर पहले को पिकअप करो दूसरे की क्लास स्टार्ट. सैटरडे संडे में पापा बेसिकली होते ऊबर ड्राइवर विद नो रेटिंग एंड डेफिनेटली नो पेमेंट. लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, दंगल में तो बच्चियों ने ये बोला था कि जो बापू है उनके वो सेहत के लिए डेफिनेटली हानिकारक है, लेकिन आपके घर में तो सिचुएशन बिल्कुल उल्टा लग रहा है. यहाँ बच्चों की एक्टिविटीज बापू के वीकेंड के लिए हानिकारक है. सो दिस सॉन्ग नेक्स्ट सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू दिस बापू जिनकी लाइफ आजकल अपने बेटे और बेटियों के एक्टिविटीज से चलती है.

You're listening to 104.9 FM Funny Shah Radio. चल रहा है गपशप with me Ramita about the weekend. और ये weekend को ना हम एक बहुत ही full day commitment बना लेते हैं. Why not try a new thing which is like a 2-hour adventure? Like आप कोई भी neighborhood choose कर लो जो आपने प्रॉपरली कभी एक्सप्लोर नहीं किया. लाइक अगर अफ्रिस्को में रहते हो, यू कैन गो टू एनी वेयर अराउंड सलाइना, यू कैन गो टू एनी वेयर अराउंड DFW, आई मीन फोर्ट वर्थ, एंड एक्सप्लोर नेबरहुड्स, न्यू प्लेसेस लाइक कॉफी, बुक स्टोर, पार्क, कहीं पे एक नया डिजर्ट खाने चले गए, रादर देन घर पे लाइक बैठे हो. मतलब ट्रैवल तो नहीं है, कहीं पे जाना नहीं है, कहीं पे सूटकेस पैक नहीं करना, बस एक गाड़ी ली और निकल पड़े. यू नो एडल्ट्स की यही प्रॉब्लम है. अगर प्लान छोटा है, मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर वो 8 घंटे का पूरा आइटिनरी बना के आप प्लान कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ग्रुप चैट में प्लान्स बनते हैं, फ्रेंड्स, एक फ्रेंड नहीं गया तो दूसरे को ज़बरदस्ती खींच के ले जाना. यार अपने लिए भी टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा वॉक कर लो, चाय पी लो, थोड़ा फार्मर्स मार्केट घूम लो, कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ फनीशा सुनते सुनते, और लाइब्रेरी में जाओ, उसके बाद लंच कर लो. यार कितना कुछ कर सकते हो. कीप इट वेरी लोकल, कीप इट वेरी सिंपल, बट कीप इट वेरी स्पेसिफिक. और अगर आपका 2-hour एडवेंचर लंबा एक नींद लेना है, गहरा एक नींद लेना है, रिलैक्स करना है, वो भी मुझे बता सकते हो. स्टूडियो का नंबर इज 972-235-5555. लेट मी नो व्हाट योर 2-hour एडवेंचर वुड बी लाइक दिस वीकेंड.

सुन रहे हैं आप 104.9 FM फनी शो रेडियो. दिस इज गपशप गली विथ मी रमिता. और फ्राइडे द 2nd of October गपशप इज ऑल अबाउट द वीकेंड्स. और यू नो वीकेंड प्लान्स डिसाइड करना इन अ फैमिली कैन बिकम अ फुल फ्लेज्ड यूनाइटेड नेशंस मीटिंग. क्यों? देखो, एक को मूवी देखनी है, एक को शॉपिंग करनी है, किड्स को एक्टिविटीज चाहिए, और एक फैमिली मेंबर हमेशा बोलेगा कि मुझे कुछ भी चलेगा. फिर आप जो भी सजेस्ट करो उनको, तो वो ही बोलेंगे नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं. बट आज है 2nd October, तो एक बॉलीवुड फैमिली है जिनके वीकेंड प्लान्स में बिल्कुल आई विल नॉट डू एनी सवाल. दैट इज द सलगांवकर फैमिली. बिकॉज बॉलीवुड फैंस नो कि 2nd October को विजय सलगांवकर और उनकी फैमिली पणजी गए थे, सत्संग अटेंड किया, पाव भाजी खाई और मूवी देखी. और भाई, उनका फैमिली प्लानिंग इतना परफेक्टली याद है हमको कि हम अपना लास्ट वीकेंड भूल जाए, लेकिन सलगांवकर फैमिली का 2nd और 3rd October हम नहीं भूल सकते. एंड व्हाट टाइमिंग, बिकॉज दृश्यम द कंक्लूशन इज बैक ऑन द स्क्रीन टुडे. तो आज अगर घर में कोई पूछे कि वीकेंड में क्या करे, जस्ट से सलगांवकर फैमिली प्लान फॉलो करते. सत्संग ऑप्शनल है, पाव भाजी डेफिनेटली इज ऑन गेम, एंड दृश्यम ऑन द बिग स्क्रीन इज परफेक्ट. बस एक रिक्वेस्ट है DFW वालों, मूवी देखकर सोशल मीडिया में कोई स्पॉइलर मत देना. हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है. और मंडे ऑफिस जाके जिसको भी स्पॉइलर देना है, आई मीन वो कलीग जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसको वो स्पॉइलर दे देना. फिलहाल गेट सम म्यूजिक ओनली ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो.

53 minutes past 10 o'clock, you're listening to 104.9 FM, Phanisha Radio. This is Gup Shup Gully with me, Ramita. और सुनीता ने अभी कॉल किया और मुझे करेक्ट किया, बिल्कुल. हम अक्टूबर 2nd बोलते बॉलीवुड वाले तुरंत पनाजी, सत्संग, पाव भाजी, दृश्यम. बट शी ग्रेसफुली आस्क्ड मी एंड टोल्ड मी के भाई अक्टूबर 2nd का एक और भी सिग्निफिकेंस है एंड दैट इज द बर्थडे ऑफ द फादर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया, आई मीन महात्मा गांधी. एंड एब्सोल्यूटली समटाइम्स पॉप कल्चर किसी डेट को इतना स्ट्रांगली कैप्चर कर लेती है कि ओरिजिनल सिग्निफिकेंस थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है. अक्टूबर 2nd 1869 वॉज द डे महात्मा गांधी was born and India observes the day as Gandhi Jayanti. So thank you Sunita for the reminder. Aaj October 2nd ke hum do answers de sakte. Ek history fan se poochho ki aaj ka date kyun important hai aur hum jaise Bollywood fan se bhi pooch lo ki Salgaonkar family kahan gayi thi. Ek date completely different memories and that's actually the fun of radio. You never know which listener is going to add another layer to this gupshup.

0: You're listening to 104.9 FM Farisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Rumita. हमारे शो में आज पहला घंटा हमने डिस्कस किया अबाउट द वीकेंड प्लान्स, उनके हेडलाइंस, छोटे छोटे एडवेंचर्स, आपके प्लान्स, मूवी वॉच लिस्टिंग, और 11 बजे हमारी गियर थोड़ी सी चेंज होने वाली है. लाइक लास्ट वीक एंड एवरी वीक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर दिल का डिलेमा, वेयर द सिचुएशन इज रियलिस्टिक. मेरे ओपिनियन ऑनेस्ट है, DFW आपके साइड्स भी डिवाइडेड है. सो अगर कोई भी कंसर्न हो लाइफ में, दिल में कोई भी डिलेमा हो, कॉल मी एंड टेल मी एंड शेयर विद मी एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट ऑल टुगेदर ओनली ऑन 104.9 FM Farisha Radio. यानी कि आपके प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्यूशंस, और साथ ही साथ हमारे मनपसंद गाने. इफ यू रिक्वेस्ट वील प्ले, बट हम वी क्रिएट द फन, वील गेट इन टू इट, वील हैव डिस्कशंस एंड अ लॉट ऑफ गपशप ओनली ऑन योर फेवरेट Farisha Radio.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू

0: Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
6: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
7: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
8: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पास या, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
9: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
10: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
11: सुबह ड्राइव पे
12: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शो रेडियो।
13: दोपहर फोन पर
14: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फनी शो रेडियो।
15: शाम को घर पर
16: यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
17: योर कस्टमर्स आर एवरीवेयर, तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
18: फन एशिया नेटवर्क के साथ कस्टमर्स तक पहुंचे रेडियो से डिजिटल तक, एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स व्हाइल ट्रैकिंग कॉल्स, बुकिंग्स और विजिट्स। अ 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, सो कस्टमर्स कैन हियर अबाउट यू, सी यू एंड कनेक्ट विद यू।
17: टू एडवर्टाइज कॉल 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net।
18: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
19: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

7 a.m. by the studio clock. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gupshup Gully with me, Ramita. And Gupshup Gully mein abhi time hai Dil Ka Dilemma segment ka. And this one is for anyone jiske friends ko pata hai ki aap professionally kya karte ho. Yani ki ye jo situation I'm going to describe right now by a listener, unka ek chhota sa business hai. एंड एवरी नाउ एंड देन उनके फ्रेंड से एक मैसेज आता है कि यार छोटा सा काम था. कभी लोगों में क्विक चेंज होता है, कभी फ्लायर बनाना होता है, कभी वेबसाइट की एक लाइन चेंज करनी होती है और सोशल मीडिया कैप्शन भी उन्हीं से वो लिखवाते हैं. यार अब चैट जीपीटी के ज़माने में क्यों आप अपने दोस्त से इतना काम करवाते हो, बट एनीवे वो करवा लेते हैं. एंड इंडिविजुअली हर रिक्वेस्ट जेन्युइनली बहुत ही छोटी लगती है. प्रॉब्लम ये है कि ये छोटे छोटे काम ऐड होते होते देयर इज अ आवर्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क जो पाइल अप होता है. और रिसेंटली जो लिसनर ने मुझे कॉल करके ये बताया, उनका डिलेमा ये है कि फाइनली उन्होंने अपने दोस्त से पेमेंट का ऑप्शन या टर्म मेंशन किया और उनके मतलब फ्रेंड की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया कि भाई फ्रेंड्स में पैसे. एंड आउच, दैट इज द डिलेमा. यू नो फ्रेंडशिप में ऑब्वियसली हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं. कभी कॉफी हमने बाय की, कभी एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया, कभी किसी का रेज्यूमे चेक कर दिया. बट अगर कोई चीज आपका एक्चुअल प्रोफेशन है तो किस पॉइंट पर फेवर फ्री प्रोफेशनल सर्विस बन जाता है यार. मेरा टेक ये है कि फ्रेंडशिप डिस्काउंट एब्सोल्युटली, बट फ्रेंडशिप लाइफ टाइम फ्री सब्सक्रिप्शन वो थोड़ा डिफिकल्ट है. एक छोटा काम गिफ्ट करना है ब्यूटिफुल, बट अगर रेगुलरली टाइम और एक्सपर्टीज लग रही है, आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फेयर टू से कि यार आई वुड लव टू हेल्प, बट मेरा फ्रेंड रेट इतना है एंड दिस इज वॉट इट इंक्लूड्स. बिकॉज गुड फ्रेंडशिप में सपोर्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए. बट DFW, दिल का डिलेमा आप ही सॉल्व करो, क्योंकि क्लोज फ्रेंड के बिजनेस के लिए प्रोफेशनल काम फुल प्राइस, फ्रेंड्स प्राइस या दोस्ती में छोटे मोटे काम फ्री होने चाहिए. आई हैव अ फीलिंग इस वाले पे ओपिनियंस विल बी डिवाइडेड.

0: ऊपर से तो बकरी भी नहीं झपती, और तुम कूद गई। अकल नहीं है का? चील कौवे भी नहीं खाएंगे तुम्हें।
1: तो मारना क्यों चाहती थी मुझे?
2: You're listening to 104.9 FM Funny Show Radio. This is Gupshup Gali और चल रहा है हमारा दिल का डिलेमा सेगमेंट, जहाँ पे एक लिसनर ने कॉल किया और हम जो बात कर रहे थे ना अबाउट द फ्री प्रोफेशनल सर्विसेज दैट यू रिसीव और गिव टू योर फ्रेंड्स और उसके बदले में कोई पैसा मिलता नहीं, इसी टॉपिक से लेकर लिसनर ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि मेरा प्रॉब्लम फ्री काम का नहीं है, फ्रेंड्स का उधार है। यू नो, कभी कभी कोई दोस्त मनी बॉन्डो करने के लिए आता है और आप अगर मना करो तो फ्रेंडशिप ऑकवर्ड हो जाती है और फिर वो लाइन के यार तेरे पास तो इतना है, थोड़ा उधार नहीं दे सकता। तो लिसनर ने, जिनका नाम मैं नहीं ले सकती क्योंकि उन्होंने मना किया, एक पॉइंट उन्होंने रखा है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। यार कि सिर्फ मेरे पास पैसा है दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि आई एम ऑब्लिगेटेड टू लेंड देम, बिकॉज सामने वाला कभी कभी ऐसे नाराज हो जाता है जैसे आपने उसके पैसे रोक रखे। यार बट दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर आप अपने यू नो फ्रेंड को मनी बोरो करते हो, देते भी हो एज अ लोन और समथिंग, और इस विश्वास से देते हो दैट दे विल पे यू बैक एंड रिटर्न द मनी, वहाँ पे भी वो बात आती है यार फ्रेंडशिप है यार, वहाँ पे पैसे क्यों? और सबसे ऑकवर्ड पार्ट ये है कि आप अपने ही पैसे मांगने में आपको तब अनकम्फर्टेबल फील होता है, यार दैट इज नॉट cool. So today's real दिल का dilemma is, अगर कोई आपका genuinely close बंदा, आपका दोस्त genuinely friendship help मांगे, तो क्या friendship में loan देना चाहिए? Advices के लिए मैं नहीं कुछ बोल सकती, but अगर आपको सच में आपके financial advices जरूरी है, इसके लिए you need to contact CPA सुधीर पाई, बिकॉज उनकी जो पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज है आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, रियल एस्टेट के लिए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए एंड ऑल्सो फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, यू कैन डेफिनेटली गो टू CPA सुधीर पाई फॉर माई टाइम इक्विटी। विजिट mytimeequity.com और कॉल 4697021272। कीप लिसनिंग, द गपशप इज ऑन विथ योर दिल का डिलेमा।

दिल का डिलेमा सेगमेंट इज ऑन, जहां पे बात हो रही है आपके दिल की प्रॉब्लम्स की, रियलिस्टिक सिचुएशंस। जैसे आप अगर कोई बिजनेस ओन करते हो, पैसा उधार वगैरह वगैरह, आज तक अभी तक जो आज मैंने डिस्कशंस की है अबाउट द डिलेमास दैट द DFW इज फेसिंग। और सच बात बात तो हो रही है फ्रेंड्स की, बट एक सोशल मीडिया पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट बहुत लोग ऐसे नहीं समझ, मतलब सोचते नहीं है। लाइक एक रील ही तो बनानी है, कैप्शन ही तो लिखना है, एक पोस्ट ही तो डालना है, यार उसमें मेहनत लगती है, उसमें सोच लगती है कि एक रील सिर्फ एक रील नहीं है, उसके पीछे आइडियाज़ है, शूट्स है, एडिट्स है, कैप्शन है, पोस्टिंग है, एक पूरा प्रोसेस है। और बिजनेस भी तो सिर्फ पोस्ट करना नहीं होता है, यू वांट द राइट पीपल टू एक्चुअली सी योर content, and trust me, if you own a business, you definitely have your social media page to market it properly, and that's where Relative Media comes in, because Funisha Network लेकर आया है उनकी media expertise on your social media as well with Relative Media, from engaging reels, graphic content, उनके captions, content distribution, amplification, आप अपने business को और भी ज़्यादा amplify कीजिए with Funisha's radio, digital and community platforms only on Relative Media, जो कि आपके brand को देगा एक complete content solution. You can call in this number, which is 469-424-3188. That is 469-424-3188 to book your content audit today. Or you can visit the Relative Media pages, which is there on Instagram and Facebook. That is powered by Funisha Network. So for your social media content, Relative Media by Funisha Network.

0: अलगे लाइफ अलगे स्टाइल अलगे
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
3: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभाल लेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
7: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime, 9191 Kaiser Way, suite 205, Frisco.
8: That garba was totally worth it. We had so much fun.
9: I lost so much of calories today and I'm starving, but it's so late. Where can we eat now?
8: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
10: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba Fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
11: Beta, 95% aaye?
12: Haan, mummy.
11: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
13: Mera?
11: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
13: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में, अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 a.m. टू 8 p.m. मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका। चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट।

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gup Shup Gali और आपका दोबारा स्वागत है हमारे इस दिल के दिलेमा का ये जो सेगमेंट है वहाँ पे नेक्स्ट दिलेमा जो लिस्नर ने बोला है अबाउट हिज फ्रेंड. सो द दिलेमा इज दैट ही हैज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, एटलीस्ट वो उन्हें अपना क्लोज फ्रेंड मानते हैं. तो जब फ्रेंड की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, अगर उनकी बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है, काम का प्रॉब्लम होता है, फैमिली ड्रामा होता है, कुछ भी होता है, तो इमीडिएटली एक फोन आ जाता है, यार बहुत ही तकलीफों से गुजर रहा हूँ, सुन ले. एंड द कन्वर्सेशंस आर नॉट फॉर 5 मिनट्स, वो 45 मिनट्स तक भी होते हैं, एक घंटा भी होता है, समटाइम्स लेट एट नाइट भी. तो लिसनर हमारे वो सुनते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और अगले दिन सुबह वो चेक भी करते हैं, यार सब कुछ ठीक है या नहीं. बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम जब उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, मतलब लिसनर के दोस्त की लाइफ अच्छी चल रही है, तो वो दोस्त गायब हो जाता है. वीकेंड प्लान्स अगर है तो किसी दूसरे दोस्त के साथ, बर्थडे डिनर है तो किसी दूसरे दोस्त के साथ, कोई घर पे गुड न्यूज़ है तो वो इंस्टाग्राम से पता चलता है, और क्राइसिस यहीं पे है. लिसनर बोल रहे हैं कि अगर मैं वही बंदा हूँ जिससे वो सिर्फ अपने दुख बांट सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सुनने में, बट यार अपने खुशी में मुझे भी शामिल करो यार, ये क्या बात हुई, सिर्फ अगर किसी प्रॉब्लम में हो तो ही आप मुझे याद करो. मेरा टेक है ये कि आई वुडंट इमीडिएटली एंड दिस फ्रेंडशिप, आई वुड स्टॉप गिविंग दिस बेस्ट फ्रेंड लेवल एक्सेस, बिकॉज दोस्ती में ना सिर्फ डिफिकल्ट मोमेंट्स में अवेलेबल रहना ही नहीं होता है. आई वॉन्ट टू नो योर गुड न्यूज़ टू. मुझे सिर्फ वो फ़ोन मत करो जब आपके बीवी से लड़ाई होती है, कभी वो फ़ोन भी कर लिया करो यार कि आज कुछ अच्छा हुआ और तेरी याद आ गई. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. इफ़ यू हैव एनी अदर ओपिनियन ऑन दिस सिचुएशन मुझे बताओ, चाहे इससे सेम सिचुएशन आप गुजर रहे हो तो भी शेयर करो, आपका कोई डिफरेंट पॉइंट है, टेक है इसमें, वो भी शेयर करो, ताकि हमारे जो लिसनर है उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए.

0: मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
1: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
2: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाए विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
1: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: That garba was totally worth it. We had so much fun.
6: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
5: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
7: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
9: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
13: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
3: कितनी लंबी लिस्ट है?
2: बस दो पेजेस।

9 minutes past 12 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. Today is 2nd of October and it's Friday. और गपशप गली में अभी टाइम है एक गिव अवे का, यानी कि मैं रमिता आपके लिए लेकर आई हूँ अ गिव अवे फ्रॉम डक टाइम एज दे सेलिब्रेटिंग इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी इन डैलस. तो अगर आपके घर में जो डक्ट्स है वहाँ पे यू नीड टू रिमूव दोज अननेसेसरी डस्ट क्लॉग्ड जो वेंट्स है उनके, ताकि आप अपने घर का जो सर्कुलेशन है, एयर सर्कुलेशन है, एयर फ्लो है, उसे बरकरार रख सकते हैं. और आप बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि क्लॉग्ड वेंट्स और डस्टी वेंट्स से कभी कभी कुछ फायर हैजर्ड्स भी सामने आते हैं. एंड फॉर दैट इट टू गेट रिमूव्ड फ्रॉम योर डक्ट्स एंड वेंट्स यू नीड टू कॉन्टैक्ट जीतू पटेल with duck time. Unka number hai 972-877-2500. That's 972-877-2500. And you can book your appointment today for cleaning your ducts for a cleaner, safer and a fresher home definitely. But here's your chance to win a 50% discount on dryer vent cleaning from Duck Time with this giveaway. All you have to do is I'm going to give you 3 clues about a movie aur aapko wo movie guess karni hai. So be ready. Clue number 1, it is a love story jahan pe ladka aur ladki sirf involved nahi hai, unke families bhi involved hai jo diametrically opposite hai ek dusre se. Clue number 2, the hero is a flamboyant Punjabi munda with a heroine that he has by his side, which is a outspoken Bengali journalist. और उनके कंपैटिबिलिटी उनको टेस्ट करने के लिए दे एक्सपेरिमेंट विद देयर लाइफ. एंड क्लू नंबर 3 इस फिल्म में एक आइकॉनिक वेटरन बॉलीवुड पेयर भी है जिनकी अधूरी पुरानी लव स्टोरी भी प्रेजेंट डे रोमांस के साथ चलती रहती है. फॉर ऑल माय बॉलीवुड बफ्स, इफ यू हैव By now, guessed which movie I'm talking about, call me at 972-235-5555 and win this giveaway by Duck Time. Baby, when I look into your eyes, I can see the stars shining so bright, so like the starry eye. Let me hear you

यस यस यस यू आर राइट, इट इज रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। क्लूज इजी थे और आप मतलब DFW लिसनर्स भी हमारे इतने बॉलीवुड बफ से कि उनको लाइक 10 सेकंड भी नहीं लगता, फोन उठाते हैं, नंबर घुमाते हैं एंड आंसर दे देते करेक्टली। और जिन्होंने ये आंसर करेक्टली और पहले दिया है उनका नाम है शिखा बिश्त। कंग्रेचुलेशंस शिखा, यू विन दिस 50% डिस्काउंट ऑन ड्रायर वेंट क्लीनिंग फ्रॉम डक टाइम। चलते हैं और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की बात जब हो रही है तो व्हाई नॉट लिसन टू दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स दिस मूवी हैज, सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय।

You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. This is Gapshup Gali with me, Rimita. Or agar aapko you know, if you have to have your annual physicals with your in you know, primary care services, urgent care services, then पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज बीन प्राउडली केयरिंग फॉर आवर कम्युनिटी एंड दे आर बैक विद देयर न्यू सेकंड लोकेशन इन फ्रिस्को विद एन इंट्रोडक्शन आई मीन इंट्रोड्यूसिंग द लिनॉक्सी मेडिकल सर्विसेज फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लिनॉक्सी मेडिकल सर्विसेज में अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्स रेज, सिटी स्कैंस और कार्डिक डायग्नोस्टिक्स के साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करने का मूड हुआ, देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई आउट देयर हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज विच इज ऑल्सो देयर अंडर द सेम रूफ. इट इज ओपन ऑल द 7 डेज अ वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM. यू कैन वॉक इन एनी टाइम एंड हैव योर चेकअप्स डन विदाउट एनी प्रायर अपॉइंटमेंट. दैट इज लिनॉक्सी मेडिकल बाई टेक्सास प्राइमरी केयर सर्विसेज.

0: हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: That garba was totally worth it. We had so much fun.
3: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
2: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
4: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
6: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
9: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
8: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लंच,
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लंच ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लंच, हर बाय सुपरहिट।
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
1: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
11: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
12: कीमा पराठा।
13: मम्मी ऑमलेट पराठा।
14: बेटी हलवा पूरी और तरकारी।
11: अब संडे को 3 अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
1: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99। अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड। विजिट सिग्नेचर क्विजीन .net.
15: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result?
16: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
15: Miss Clicks?
17: 100 लोगों ने click भी किया.
15: Customers कितने आए?
18: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
19: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a financial

0: नेशन का फन स्टेशन फनेशियर रेडियो।
1: हेलो नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून डैलस, दिस इज योर होस्ट आयुषी और आप सुन रहे हैं फनेशिया 104.9 एफएम। रिमिता के बाद गपशप गली में बहुत सारी गप्पे मारने के बाद अब आपको मेरी बकबक सुननी पड़ेगी और आज के शो को शुरू करते हैं। आज कैलेंडर में तारीख है अक्टूबर 2 और आज एक ऐसे बंदे का जन्मदिन है जिसमें था दम, तो आज का थोड़ा सा वक्त उनके लिए करते हैं डेडिकेट।

तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर, एक ऐसा दिन जब हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। आगे चलकर यही मोहनदास दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गांधी जी का जीवन सिर्फ भारत की आज़ादी की कहानी नहीं है, बल्कि ये सत्य, अहिंसा और आत्मबल की कहानी भी है। तो महात्मा गांधी का आज जन्मदिन है, तो क्यों ना अपने शो के इस सेगमेंट में आपसे पूछें चंद सवाल जो हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड। देखते हैं कौन हमारे बापू को थोड़ा जानता है, थोड़े अच्छे से जानता है। तो मैं अगले इस गाने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछूंगी बापू के बारे में। बहुत सारी जो बातें मुझे पता है वो आप तक लेकर के आऊंगी, और देखते हैं उन सवालों के जवाब कौन देता है।

दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए बापू ने भेदभाव और अन्याय का सामना किया और वहीं से उनके सत्याग्रह के विचार को एक नई दिशा मिली। भारत लौटने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों के माध्यम से लाखों भारतीय को एकजुट किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि किसी अन्याय का विरोध करने के लिए हिंसा जरूरी नहीं है, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी बड़े से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। उनकी सादगी भी उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। खादी, चरखा और स्वदेशी उनके जीवन और विचारों का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। वे सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे, बल्कि स्वच्छता, आत्मनिर्भरता, समानता और सामाजिक सुधार पर भी जोर देते थे। और शायद यही वजह है कि गांधी जी की विचारधारा भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। दुनिया के कई नेताओं और आंदोलनों ने उनके अहिंसा संघर्ष से प्रेरणा ली। आज गांधी जयंती पर सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हम गांधी जी को कितना जानते हैं, बल्कि यह भी है कि उनके विचारों में से कितना अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आज के दिन एक छोटा सा संकल्प कर सकते हैं हम कि सच बोलने का, हिंसा से दूर रहने का, दूसरों का सम्मान करने का और अपने आसपास सकारात्मक बदलाव लाने का ये दृढ़ निश्चय हम कर सकते हैं। महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर शत शत नमन है और आपके साथ स्टूडियो में आपकी होस्ट आयुषी आज गांधी जयंती पर आपसे कुछ सवाल पूछने वाली है गांधी जी से रिलेटेड। तो देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज कितनी है, कि आप बापू को कितना जानते हैं। और पहला सवाल आप लोगों के लिए ये है कि भाई गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। बहुत ही आसान सा सवाल है, अभी मैंने ये सवाल पूछा, ये सवाल का जवाब ऑलरेडी दिया है, तो प्लीज कॉल करके बताइए अगर आपको मालूम है तो।

आपके इतने सारे कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबने सही जवाब दिया है, गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अगला सवाल जल्दी से पूछ देती हूँ कि गांधी जी ने कानून की पढ़ाई किस शहर में की थी। अगर आपको पता है तो जरूर कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर।

अगले गाने की तरफ लेकर के चल रहे हैं आपको। गाना थोड़ा सा पुराना है पर है बहुत ही मजेदार। भारत की झांकी दिखाते हैं आपको।

0: अशोक जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई लंदन से की थी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने 1930 में किस स्थान तक ऐतिहासिक मार्च किया था?
1: अपने गौरव की अभिमान की इस मिट्टी से तिलक।
0: अगर आपको पता है तो कॉल करें स्टूडियो के नंबर पे 972-235-5555।

0: बोल रही है कण
1: कण। आप ऑन एयर है, सही जवाब बताइए।
2: डांडी डांडी कुचियाटा।
1: बिल्कुल सही जवाब। आपका नाम जान सकती हूँ?
2: अनिल कुमार पटेल।
1: थैंक यू अनिल जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका।

अगला सवाल है, भारत में गांधी जी का पहला प्रमुख सत्याग्रह किस स्थान से जुड़ा माना जाता है? इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, जयपुर, दिल्ली, चंपारण या मुंबई।

0: बताइए जवाब, आप ऑन एयर हैं, पीछे का आवाज कम करके जवाब दीजिए प्लीज। हेलो,
1: बताइए जवाब, आप ऑन एयर हैं।
2: मैं आपको जवाब नहीं बता रहा हूँ, आपको एक सवाल बता रहा हूँ। आप मुझसे पूछे

0: आप ऑन एयर है, बताएं जवाब अगर आपको पता है तो।
1: मेरे को जवाब नहीं पता है, लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप लोगों से पूछें कि एक बार गांधी जी ट्रेन में जा रहे थे, उनका जूता गिर गया, उनका चप्पल गिर गया, तो उन्होंने उठा के दूसरा चप्पल क्यों बाहर फेंक दिया?
0: ठीक है सर, पूछेंगे। थैंक यू सो मच।
1: ओके
0: हेलो, हाय फनीशा, आप ऑन एयर हैं? हेलो फनीशा, आप ऑन एयर हैं?
2: जवाब चंपारण या नो
0: बिल्कुल सही जवाब है सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग।
2: प्रॉब्लम।
0: तो ये कुछ सवाल थे जो हम बापू के बारे में, मतलब हमारे महात्मा गांधी के बारे में पूछ रहे हैं आपसे अपने शो के इस सेगमेंट में, जहां पे आज हम गांधी जयंती मना रहे हैं फनीशा के स्टूडियो से।

एक और सवाल पूछती हूँ आपसे बापू से जुड़ा हुआ। गांधी जी का प्रसिद्ध चरखा किस विचार से विशेष रूप से जुड़ा हुआ था? और इसके ऑप्शंस दे रही हूँ आपको, औद्योगिक उत्पादन, समुद्री व्यापार, सैन्य परीक्षण, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता।

0: आप ऑन एयर हैं, बताएं जवाब।
1: स्वदेशी और आत्मनिर्भरता।
0: बिल्कुल सही जवाब है सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: थैंक यू।
0: आप ऑन एयर हैं, जवाब दे सकते हैं। आप ऑन एयर हैं, जवाब दे सकते हैं सर।
2: आत्मनिर्भरता।
0: बिल्कुल सही जवाब है मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।

एक और सवाल, गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र ने किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्धारित किया है? I'll ask the question in English as well. October 2nd, Gandhiji's birthday is observed by the United Nations as which International Day? And the options are International Day of Democracy, International Day of Peace, Human Rights Day, or International Day of Non-Violence.

0: आप ऑन एयर हैं, बताइए जवाब।
1: इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, नॉन वायलेंस।
0: यस यू आर राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: थैंक यू।

0: दुबले से पतले से।
1: बहुत मजा आया आपके साथ इस सेगमेंट में ये क्विज खेलकर, जहां पर ढेरों कॉल्स आई और सबने जवाब दिए, बहुत सारे और सही जवाब थे। हम सब हमारे बापू को अच्छे से जानते हैं, आज भी हम अपने देश अपनी मिट्टी से वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे पहले थे। ये बस उसका छोटा सा एक एग्जाम्पल था। एंड यस, अपने शो को ऐसे ही जारी रखेंगे, कुछ और सवाल पूछेंगे और कुछ और अच्छे गाने आपको सुनाएंगे और वापस आएंगे इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनी शो 104.9 FM पर।

0: रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है, लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
1: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com।
2: दिल की बात किससे कहें?
3: पंडित गुरुदेव से। 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 4695811777। दैट्स 4695811777। पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए।
4: That garba was totally worth it. We had so much fun.
5: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
4: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
6: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं।
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं।
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं।
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। AG FinTechs, your growth, our strategy.
10: AG FinTechs, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaaye to jaaye kahan?
13: Simple, Basera Grand. One destination, double the flavor.
14: Matlab crispy golden dosa?
13: Yes, rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
14: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
12: Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy together.
15: Subah drive pe.
16: You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio.
17: दोपहर फोन पर।
18: I don't listen to Spotify. I listen to Funny Share Radio.
19: शाम को घर पर।
8: You are listening to Fun Asia Radio.
2: Your customers are listening.
6: पर क्या आपके बिजनेस की आवाज उन तक पहुंच रही है?
3: Business, products या services? Let Dallas hear about you. Advertise on Fun Asia Network in Hindi, Tamil, Telugu or Punjabi and connect with your customers in their own language.
1: From radio spots to live RJ mentions, let your business become a familiar name on their favorite station.
3: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
1: Fun Asia Network. Be heard, be remembered, be chosen.
10: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM Fun Asia Radio.
13: Nation ka fun station, Fun Asia Radio.
5: हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू फन एशिया 104.9 FM। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और आज हम लोग 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं फन एशिया के स्टूडियो से। लेकिन 2 अक्टूबर को सिर्फ महात्मा गांधी जी का जन्मदिन नहीं होता है, वो तो हम मनाते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ इस दिन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था, तो उस पे भी थोड़ी सी चर्चा तो करनी चाहिए, है कि नहीं? तो 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, जो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है, में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। उनका बचपन आर्थिक कठिनाइयों के बीच था। बहुत छोटी उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन इन परिस्थितियों में उनके हौसले को कमजोर नहीं किया। शास्त्री जी का असली नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। उन्होंने वाराणसी के काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की और वहीं उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। आगे चलकर यही उनके नाम का हिस्सा बन गया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया और अपने जीवन के लगभग 7 वर्ष जेल में बिताए। आज़ादी के बाद उनका प्रशासनिक और राजनीतिक सफर आगे बढ़ा और उन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। शास्त्री जी ने रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। रेल मंत्री रहते हुए एक बड़ी रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। यह घटना आज भी सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही की चर्चा में अक्सर याद की जाती है। और फिर आया साल 1964 जब लाल बहादुर शास्त्री जी बने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। तो ये थी कुछ बातें लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी हुई, जिनका जन्म दिवस आज के ही दिन हुआ था 2 अक्टूबर, और गांधी जी के साथ साथ आज हम उनको भी याद कर रहे हैं।

तो 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन यह कई बड़ी चुनौतियों से भरा हुआ था। देश को खाद्य संकट और आर्थिक दबाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी दौर में शास्त्री जी ने किसानों और जवानों दोनों के महत्व को सामने रखते हुए प्रसिद्ध नारा दिया, जय जवान जय किसान। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने देश के सैनिक का मनोबल मजबूत किया, साथ ही कृषि उत्पादन बढ़ाने और देश को खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रयास को प्रोत्साहन मिला। बाद के वर्षों में भारत की हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के विकास के संदर्भ में शास्त्री जी के दौर को महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन शास्त्री जी की पहचान केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी पहचान थी सादगी, ईमानदारी और दृढ़ता। एक ऐसे दौर में जब देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, उन्होंने आम लोगों से भी त्याग और अनुशासन की अपील की। उनका जीवन यह दिखाता है कि सार्वजनिक नेतृत्व हमेशा बड़े शब्दों या दिखावे से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और व्यक्तिगत आचरण से भी पहचाना जाता है। 1966 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज उनकी जयंती पर हम लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हुए उनके जीवन से जुड़ी तीन बातें याद कर सकते हैं, सादगी, जिम्मेदारी और देश के प्रति समर्पण। एक छोटे कद के व्यक्ति, लेकिन अपने संकल्प और योगदान से भारतीय इतिहास में एक बड़ी पहचान छोड़ने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन है। और दोस्तों, आज के दिन हमें यह भी याद दिलाता है, जय जवान जय किसान सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और देश की खाद्य शक्ति दोनों के महत्व को समझाने का संदेश है। तो भाई, आज के दिन शास्त्री जी को शत शत नमन।

दोस्तों, 2 अक्टूबर सिर्फ एक नहीं बल्कि भारत के दो महान व्यक्तियों को याद करने का दिन है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी। गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा की शक्ति दिखाई और देश के स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं शास्त्री जी ने स्वतंत्र भारत में सादगी, अनुशासन, जिम्मेदारी और दृढ़ नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका प्रसिद्ध संदेश जय जवान जय किसान देश की सुरक्षा और कृषि दोनों के महत्व को सामने रखता है। दोनों का जीवन अलग दौर पर अलग परिस्थितियों में रहा, लेकिन एक बात दोनों में समान थी, देश और समाज के प्रति समर्पण। तो आज 2 अक्टूबर को आइए गांधी जी से सत्य और अहिंसा और शास्त्री जी से सादगी और जिम्मेदारी की प्रेरणा लें। इसी संदेश के साथ मैं आपसे वादा लेती हूँ महात्मा गांधी और इस संदेश के साथ मैं आपसे इस सेगमेंट को ख़त्म करने की परमिशन लेती हूँ। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन और बीना जी की फरमाइश पे ये बहुत ही प्यारा सा गाना, और उसके बाद अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे हम।

और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम आपसे इस सेगमेंट को खत्म करने का आज्ञा लेते हैं। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और आपको ये बता दें कि आपके सपनों का घर आपके बहुत ही करीब है। बस एक नाम याद रखिए, ड्रीम होम मॉर्गेज, जो कि 1998 से बहुत सारे परिवारों को मदद कर रहा है नेशन वाइड एक पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशन के साथ फॉर बाइंग एंड रीफाइनेंसिंग। यू कैन कॉल देम एट 9722455626 और विजिट dreamhomemortgage.com। ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन। और आज 2 अक्टूबर को एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत अदाकारा जी का जन्मदिन भी है, जिनकी स्माइल, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस 60s और 70s के बॉलीवुड को एक अलग चार्म दिया करती थी। मैं बात कर रही हूँ गुड़िया जापान। कौन है ये गुड़िया जापान की, जल्दी से कॉल करिए और बताइए। स्टूडियो के नंबर पे 9722355555 है स्टूडियो का नंबर और हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके कॉल का, ये जाने के लिए कि ये जो दिल लेके गई थी ना, ये गुड़िया जापान की है कौन आखिर।

तो ये गुड़िया जापान की है, आशा पारिक जी, जिनका आज जन्मदिन है, और बहुत सारे लोगों ने कॉल किया। थैंक यू राकेश जी, शाहीन जी एंड डॉक्टर राज, आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। तो हाँ, आज बॉलीवुड की गुड़िया जापान की कह लो या फिर द ओरिजिनल कांटा लगा गर्ल कह लो, ये यही हैं आशा पारिक जी, जिन्होंने अपना बहुत लंबा सफ़र बॉलीवुड में बताया है। 2 अक्टूबर को उनका भी जन्मदिन होता है, एंड शी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1942, एंड अपने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट की थी 1959 में फिल्म दिल देखो देखो में, और लीड एक्ट्रेस के रूप में अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई उन्होंने। उसके बाद तो एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, कटी पतंग, कारवा और मेरा गांव मेरा देश। आशा पारिक जी हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो गई। उनकी फिल्म कटी पतंग के लिए उन्हें फिल्म फेयर मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, और एक्टिंग के साथ साथ आशा जी एक ट्रेंड के क्लासिकल डांसर भी थी। और इसी बात पर उनके अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, बिकॉज मैंने इनको ओरिजिनल कांटा लगा गर्ल इसलिए कहा बिकॉज जब इसका रीमिक्स वर्जन आया था इस गाने का, तो उस समय शेफाली जरीवाला को बोला गया था ना कि शी इज़ द कांटा लगा गर्ल, बट आशा जी ने बहुत साल पहले 1972 में फिल्म समाधि में इस गाने पे एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी।

0: कर दिया। For those of you who do not know that Asha ji has done this song in the year 1972, उनके लिए पूरा गाना हम प्ले करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। फिलहाल जल्दी से ब्रेक पे जाइए, वापस आइए, कहीं और मत जाइएगा। ट्यून इन करके रखिए फरेशा 104.9 FM, आपकी होस्ट आयुषी आपका इंतजार कर रही है। तब तक के लिए सी यू।
1: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
2: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023-2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
3: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है। हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
4: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
3: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
4: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
2: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
5: जहाँ तंदूर की आंच, घर जैसी गर्माहट और अपनों का साथ सब एक ही मेज पर मिल जाए, अब वही पंजाब अपने दमदार स्वाद और दिल से की गई मेहमान नवाजी के साथ अर्विंग में।
2: Introducing Punjab by Page 3. Punjab से आए शेफ्स के हाथों बना अमृतसरी कुलचा विद छोले और मक्के की रोटी विद सरसों का साग, साथ में एक ठंडी लस्सी।
5: Punjab by Page 3 now in Irving. स्वाद पंजाब का, अंदाज Page 3 का।
6: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
7: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
8: That garba was totally worth it. We had so much fun.
9: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
8: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
10: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914।
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
15: Zindagi ke kai rang. Funasia Radio ke sang.
0: एक बार फिर से स्वागत है आपका फन एशिया 104.9 FM, नेशन का फन स्टेशन है ये। और यहाँ पर आप अपनी होस्ट आयुषी के साथ हैं आज स्टूडियो में। बहुत सारे प्यारे खूबसूरत गाने हमने सुने, बहुत सारी बातें की, बहुत लोगों का जन्मदिन है आज और हम इस समय आशा पारेख जी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं रेडियो फनेशिया के स्टूडियो से, आई एम सो सॉरी, फनेशिया के स्टूडियो से, और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने चल रहे हैं। तो मैं ये बता रही थी ब्रेक पे जाने के पहले कि भाई ओरिजिनल कांटा लगा गर्ल आशा पारेख जी थी जिन्होंने ये फिल्म जो कि 1972 में आई थी समाधि, उसमें इस गाने पे बहुत ही मज़ेदार परफॉर्मेंस दी थी और इस गाने को लता जी ने गाया है। उस गाने की तरफ जल्दी से आपको लेकर के चलते हैं और फिर से शुरू करते हैं मज़ेदार गानों का सफ़र।

एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा और एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं आशा पारेख जी, और उनकी जर्नी सिर्फ फिल्म्स तक ही लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने टेलीविजन प्रोडक्शन में भी काम किया है और साथ में 1998 से लेकर 2001 तक सीबीएफसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की चेयरपर्सन भी रही हैं। सिनेमा में उनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उन्हें पद्मश्री भी मिला है, बाद में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी उनको ऑनर किया गया। तो आज बॉलीवुड की इस एवरग्रीन स्टार को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड उनके अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि अगर आप एक कार इफ़ यू इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट, ट्रक स्लिप और फॉल एक्सीडेंट में हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं खुद को हील करने पे, और अटर्नी ओमार आपके लिए उस दौरान फाइट करेंगे। सो यू पे नथिंग अनलेस ही विंस। कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomar.com। तो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं। आशा पारेख जी की ही फिल्म से एक गाना, और इस गाने को गाया है आशा भोसले जी ने।

So this part of our show is proudly brought to you by AG FinTechs, offering trusted tax accounting, payroll, bookkeeping, and a business advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com today. तो हम आज जो बात कर रहे हैं बॉलीवुड की 60s-70s की द हिट गर्ल की, जिन्होंने 95 से ज़्यादा फिल्में की हैं और उन्होंने कई सारे एक्टर्स के साथ काम किया है. शमी कपूर, देवानंद, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, मनोज कुमार और पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है, क्योंकि 95 फिल्मों के बाद तो भाई बहुत सारे एक्टर्स जो हैं जो इनके साथ पर्दे पर दिखे हैं. शी स्टार्टेड एक्सट्रीमली यंग एंड उसके बाद अभी मतलब काफ़ी समय तक वो काम करते ही रहीं. उन्होंने फिर उसके बाद यू नो लेटर टेलीविजन प्रोडक्शन और डायरेक्शन में भी अपना अपने पैर रखे. और उनकी एक गुजराती सीरियल था ज्योति एंड वो बहुत सक्सेसफुल हुआ, फॉलोड बाय शोज इंक्लूडिंग कोरा कागज एंड बाजे पायल. कोरा कागज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्टार प्लस पे आया करता था. मेरी माँ बहुत बड़ी फैन थी, उसमें रेणुका शाह ने थी एंड दैट वॉज डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय आशा पारेख जी. सो टेकिंग यू टूवर्ड्स हर सॉन्ग. कुछ और गाने उनके फिल्मों से प्ले करेंगे हम. उनकी एक और फिल्म जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, फेमस थी, वो थी फिल्म कारवां, और उसके गाने अभी मैं प्ले करने वाली हूँ. आशा पारेख और जितेंद्र जी इस गाने में, आवाज़ है आशा भोसले जी की.

लुकिंग फॉर ग्रेट फूड इन प्लेनो, सिग्नेचर क्यूजीन हैज ऑल द राइट फ्लेवर्स. तो भैया इनकी फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, इनको ट्राई करिए. प्लानिंग अ बर्थडे, एनिवर्सरी और स्पेशल सेलिब्रेशन, दे ऑल्सो ऑफर बैंक्वेट सर्विसेज. विजिट सिग्नेचर क्यूजीन एट स्प्रिंग क्रीक एंड एल्मा इन ईस्ट प्लेनो और गो टू signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्यूजीन, लीविंग इट्स सिग्नेचर ऑन एवरी टेस्ट एंड यू हैव टू ट्रस्ट अस फॉर दैट. जाइए और इनका खाना ट्राई करिए. फिलहाल आपको उस गाने की तरफ लेकर के चल रहे हैं जिस फिल्म ने आशा पारेख जी को बहुत ज़्यादा पहचान भी दिलाई. पहचान तो उनकी बन चुकी थी उस समय तक, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेज दिलाया और साथ ही उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया. दिस सॉन्ग इज़ इन द वॉइस ऑफ किशोर कुमार, राजेश खन्ना और आशा पारेख जी की फिल्म कटी पतंग का ये खूबसूरत सा गाना आप लोगों के लिए.

ब्यूटिफुल सॉन्ग इन वॉइस ऑफ किशोर कुमार जी. और ये जो सीटी बज रही थी ना, जब सीटी बजाना सीखे थे तो दो ट्यून्स, एक अरे रे अरे क्या हुआ और एक ये, दोनों बजाने का बहुत कोशिश करते थे और थोड़ा बहुत बजा भी लेते थे. पर यार ये गाना बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है. भले हो ये 70s का, लेकिन आज भी इसको सुन के बहुत ही मजा आता है. शो को आगे बढ़ाते हैं, एक और गाना सुनाते हैं आशा पारेख जी की फिल्म से. लेकिन उसके पहले, Attention Texas business owners looking for a smarter commercial energy solution, trust Tara Commercial Energy, proudly serving Texas businesses since 2002 with competitive rates, reliable services and customized energy plans. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. To bhai aaj आशा जी का जन्मदिन हमने यहाँ पे बजाया, बहुत प्यारे सेलिब्रेट किया और बहुत सारे गाने बजाए उनके बर्थडे पर, उनकी ही फिल्मों के. ये गाने भले ही पुराने हों पर आज भी लगते उतने ही अच्छे हैं जितने पहले लगते थे. तो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चल रही हूँ. फिल्म कारवां का एक और गाना आज लगता है मुझे कारवां की बहुत याद आ रही है. बट यस, फिल्म कारवां का एक और प्यारा सा गाना मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
6: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
7: डील कहाँ?
6: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
8: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
9: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you

0: or financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Elwing walo, dhyan se suno. Ye sirf music nahi, hint hai. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
3: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libaas khushiyon ko dugna kar deta hai.
4: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe. Traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
5: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hai.
6: Arey sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
7: Maa, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir, agar real clarity chahiye, to personalized guidance lo.
8: Guidance ki baat ho, to ek hi naam hai. पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी.
10: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
9: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
10: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
11: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल. ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस. नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर. डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
12: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
11: Barista House, richness of biryani bliss.
13: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
14: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
13: Miss Clicks.
15: 100 logon ne click bhi kiya.
13: Customers kitne aaye?
16: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
17: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
18: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो.
19: 104.9 FM फन एशिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को. और भाई, आज हमने इतने प्यारे प्यारे गाने सुने हैं, ये 70s और 80s के दशक के, कि मत पूछिए. और शायद मेरे लिसनर्स को भी बहुत पसंद आ रहा है. बहुत सारी कॉल्स आई मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को ये गाने पसंद आए. लेकिन अब वक्त हो गया है थोड़ा सा 80s से मूव करके 90s की तरफ आने का, बिकॉज हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश आई है जिसको मैं ना नहीं कह पाई. तो लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज में ये गाना, जिसमें है सलमान खान और रवीना टंडन. फिल्म कौन सा है ये आप मुझे बताएंगे तो हम आपको देंगे गिव अवे होगा फनेशिया की तरफ से, सॉरी फन पिज्जा किचन की तरफ से गलती हो गई, एक $10 का गिफ्ट कार्ड. तो अगर आप ये जीतना चाहते हैं तो जरूर कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे 9722355555. मैंने बहुत आसान बना दिया है, पहले ही सिंगर्स बता दिए हैं और हमने आपको एक्टर और एक्ट्रेस भी बता दिया है. कॉल करिए और बताइए सिर्फ और सिर्फ फिल्म का नाम और लेके जाइए ये गिफ्ट कार्ड फन पिज्जा किचन फ्रिस्को की तरफ से.

मजा आया ना ये गाना सुन के। मैं भी डांस कर रही थी स्टूडियो में बैठे बैठे। तो बहुत सारे कॉल्स आए, लेकिन सही जवाब दिया है सबसे पहले हेतल पटेल ने, तो जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। तो भाई हेतल, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। फन पिज्जा किचन का नया मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा आप जाके एंजॉय कर सकती हैं, क्योंकि इट्स अ फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा। ट्राई द फिएस्टा वेजी और फायरी लोको, फायरी पोलो लोको, सी फूड पैक, सनॉर कैमरॉन एंड मोर। आंसर टूडे सिंपल क्वेश्चन फॉर एंड यू डिड आंसर दैट एंड यू गॉट अ $10 का गिफ्ट कार्ड। तो जाइए जल्दी से फन पिज्जा किचन के फ्रिस्को लोकेशन पे और ये गिफ्ट कार्ड ले लीजिएगा और पिज्जा भी एंजॉय करिएगा। सो यस, इन सारे गानों के बीच में ना एक आई है बर्थडे विश, क्योंकि आज हमने बहुत सारे बर्थडे मनाए। पहले बापू का, फिर शास्त्री जी का, फिर आशा पारेख जी का, और हमारी एक रेगुलर कॉलर हैं सुरैया जी, आज उनका भी जन्मदिन है। और उनके जन्मदिन पे उनके बेटे और पति देव ने गाना रिक्वेस्ट किया, बेटे ने किया है, सफ़ी ने किया है कि सुरैया जान लेगी क्या। हैप्पी बर्थडे सुरैया जी एंड सफ़ी, दिस वन इज़ फॉर यू।

Business owners, it's not just about how many people see or click on your ad, it's about how many become customers. Meet Smart Reach AI, a fun Asia network product that helps you reach potential local customers, even those visiting your competitors across radio, digital streaming TV, and online audio. Then measure what truly matters: calls, bookings, offer redemptions, and actual visits to your businesses. Visit smartreachai.us and turn local attention into customers. So, jaldi se jaiye and check kariye Smartreach AI, smartreachai.us pe. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. अब कुछ मात्र 15 मिनट बचे हुए हैं मेरे पास. कुछ मजेदार अच्छे गाने लगा करके रखे मैंने. 90s के ट्रैक प्ले करूंगी. आई वोंट ब्रेक द रिदम. हम 70s, 80s, 90s सबके गाने प्ले कर रहे हैं और आपको एंटरटेन कर रहे हैं. अगर आपको मेरा शो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप मुझे हर दिन सुन सकते हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 12:30 से लेकर के 2:30 बजे तक. आपकी होस्ट आयुषी आपको रोज एंटरटेन करने आएगी कुछ नया और अलग लेकर के. और आपके कॉल्स आज जिस मात्रा में मेरे पास आए हैं ना, जिस क्वांटिटी में आज कॉल्स आए हैं, आई एम ओवरवेल्म्ड. आई ऑलवेज से दिस दैट योर कॉल्स मेक माई डे. चाहे वो गांधी जयंती और शास्त्री जी के बर्थडे वाला सेगमेंट हो, सवाल के जवाब देने के लिए आपने कॉल किया. आशा जी के सेगमेंट में, आशा पारिक जी के बर्थडे का सेगमेंट जब कर रही थी तब आपने मुझे इतने प्यारे गाने बजाने की जो मैं प्ले कर रही थी उसके लिए कॉल किया. एंड नाउ येस आई एम ओवरवेल्म्ड टुडे. बहुत अच्छा दिन है मेरा वीकेंड बढ़िया बीतने वाला है भाई. और उम्मीद करती हूँ मेरे इन गानों के साथ आपका भी वीकेंड अच्छा ही बीते. आराम करिए, इन्जॉय करिए और बस ऐसे ही फनेशिया सुनते रहिए.

डेट वॉज सलमान खान एंड साजन, एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में था ये गाना। और अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं क्योंकि मात्र बचे हैं 8 मिनट मेरे पास और इसके बाद स्टूडियो में होंगी सुनहरी किरण जो आपको आफ्टरनून ड्राइव टाइम पे लेकर के जाएंगी। बहुत ही मजेदार शो करती हैं, उनको प्लीज ट्यून इन करके रखिएगा मेरे जाने के बाद भी। अगला गाना लेकर के आ रही हूँ 70s की फिल्म से। मैंने इसको लाइन अप नहीं किया था, मुझे एक फरमाइश आई कि यार क्या आयुषी आप इतने प्यारे गाने सुना रही थी, एक और सुना सकती हैं क्या? तो मैंने बोला क्यों नहीं जनाब, जरूर सुनाते हैं आपको हेमा मालिनी और राजेश खन्ना की फिल्म अंदाज का ये प्यारा सा गाना।

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Financial Radio. सुन रहे हैं आप, मैं हूं किरण आपके साथ. This is your afternoon drive time with Suneri Kiran. Thank you so much for tuning in. Thank you Ayushi for an absolutely beautiful show. Financial रखता है आपको informed as well as entertained 24/7. हम आपके साथ रहते हैं 972-235-5555 के through. आप भी रहते हैं हमारे साथ. आज है जी जुम्मा यानी के फ्राइडे. Thank God it's Friday. और Friday बहुत special मुझे क्यों लगता है. One, I just love Friday because the weekend की आमद आमद होती है. और the other one, because 3 PM से लेके 4:30 तक Kids Junction आपके लिए लेकर आती हूँ और बच्चा पार्टी करते हैं अपनी calls और मैं करती हूँ उनकी फरमाइशें पूरी. मेरी एक फरमाइश है, make sure it is a Hindi or a Bollywood song so that everyone who is listening to Fun Asia can enjoy it just as much as you are enjoying it. So with that, ये जो आधा घंटा है 2:30 till 3 PM, I bring you मिक्स पॉट, कुछ पुराने गाने और उनके लफ्जों से निकलते हुए कुछ नए गाने.

मिक्स स्पॉट सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण पे. और सपनों की रानी से मुझे याद आया अभी गुरु रंधावा का गाया हुआ बन जा तू मेरी रानी, तो वही गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जी कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो कोई मसला नहीं है. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए लेकर आ रहे हैं पैशन हेल्थ डायरेक्ट. तो अगर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके पास इंश्योरेंस है लेकिन आपके नेटवर्क में नहीं है तो भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं. पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ की मेंबरशिप आप ले सकते हैं, विच हेल्प इंक्लूड्स प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत कुछ. तो दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जी. एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई. तो आप उनको कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस प्रोग्राम. दैट नंबर इज 214-666-6259. वो नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं passionhealthphysicians.com.

तुम्हारी सुल्लू से सुन रहे थे आप ये गाना जो मेरे सपनों की रानी से मुझे याद आया। अच्छा जी, अगला गाना आपके लिए लगाने लगी हूँ, चिकन फ्रॉम द मूवी अमर अकबर एंथनी। और इससे कौन सा गाना आपको याद आता है ये आपने मुझे बताना है, नया गाना, क्योंकि मैं आपके लिए पुराना लगाने लगी हूँ। आप मुझे बताइए कि इस गाने को सुन के कोई ऐसा वर्ड इस गाने में से पिक कर लीजिए, कोई मुखड़े में से पिक कर लीजिए जो आप कहें कि ये गाना सुन के मुझे ये गाना याद आया, तो उससे आपको क्या मिलेगा। जी हाँ, फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का ये आपके लिए गिव अवे लेकर आई हूं। दिस इज, आप वहां जाइएगा, यू विल गेट $10 ऑफ योर नेक्स्ट बिल। सो ओनली अवेलेबल फॉर फ्रिस्को लोकेशन। तो फन पिज्जा किचन आपके लिए बेहतरीन मेन्यू तो लेकर आता ही है। funpizzakitchen.com पे आप लॉग ऑन करके उनका सारा मेन्यू चेकआउट कर सकते हैं। और अब तो उन्होंने एक नया मैक्सिकन इंस्पायर्ड लाइनअप शुरू किया है, पिज्जा लाइनअप। चाहे आप वेजिटेरियन फैंस हों या मैक्सिकन पोयो लोको फैंस हों या फिर मैक्सिकन सी फूड के फैंस हों, एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ। दे हैव अ पिज्जा ट्विस्ट टू दैट। तो जरूर विजिट कीजिए funpizzakitchen.com। दे आर लोकेटेड इन मिकिनी, सॉरी कॉलोनी, एज वेल एज फ्रिस्को। और ये गिव अवे है वैलिड फॉर फ्रिस्को, $10 ऑफ योर नेक्स्ट बिल। एंड यू हैव टू टेल मी कि अब जो आप पुराना गाना सुनिएगा, इससे कौन सा नया गाना आपके जहन में आया। इट हैज टू हैव वन वर्ड फ्रॉम दिस ओल्ड वन।

वेल विद दैट हम अपने कॉन्टेस्ट के एंड पे आ गए हैं, यानी कि गाना हो चुका है खत्म। फन पिज्जा किचन की तरफ से ये $10 ऑफ ऑन योर नेक्स्ट बिल आपके लिए आया था फ्रॉम फन पिज्जा किचन फ्रिस्को लोकेशन एक्सक्लूसिवली। थैंक यू सो मच आप सबकी फोन कॉल्स का। और दीपा, पवन, मेघा, संगीता, शिवानी, आप सब लोगों ने बड़े मजे मजे के गाने बताए। और जो नंबर वन गाना जो सबने, मतलब तीन चार लोगों ने हमें बताया, वो है जी डोला रे डोला। जैसे मैंने कहा आपको कहां से याद आया ये, तो ऑब्वियसली जैसे ही वो शुरुआत देख के तुमको दिल डोला है तो वहां से डोला डोला याद आ गया। तो वही गाना आपके लिए कनेक्शन में इस पुराने गाने के प्ले करने लगी हूं। और हमको तुमसे प्यार है, एक ये भी गाना हमारी यू नो कॉलर्स ने हमें बताया, बल्कि प्यार हमको होने लगा ये भी। और एक दो कॉलर्स ने एक और बड़ा मजे का गाना बताया, एंड दैट इज फ्रॉम द मूवी मोहब्बतें, दैट इज हमको हमी से चुरा लो। तो बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने, और कमाल बात यह कि हर गाने में इस गाने की रिलेशन से कोई वर्ड जरूर मौजूद है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स। और आज की जो हमारी लकी विनर है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं उसमें एक उसको एक नंबर असाइन होता है। मैथ के फॉर्मूले से हम आंसर निकालते हैं, आपका लक आपकी विन डिसाइड करता है। और आज के हमारे लकी विनर हैं पवन काकड़े। पवन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जीत लिया है ये $10 का काइंड ऑफ ऑफ ऑन योर नेक्स्ट बिल फ्रॉम फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को। दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए, एंड देन यू हैव 7 days टू गो एंड अवेल योर $10 ऑफ योर नेक्स्ट बिल। एंड टू ऑल ऑफ यू हु कॉल्ड, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।

मिक्स स्पॉट का बस 5 मिनट हमारे पास रह गए हैं, तो एक इस गाने के साथ प्रोग्राम का या इस सेगमेंट का इख्तिताम कर रही हूं, क्योंकि 3 बजे ऑनवर्ड्स बच्चा पार्टी का सेगमेंट शुरू हो जाएगा, यानी कि किड्स जंक्शन, वेयर आई एम गोइंग टू टेक देयर कॉल्स लाइव एंड टेक देयर रिक्वेस्ट लाइव. सो वी आर गोइंग टू प्रोबेबली एंड दिस सेगमेंट विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग किशोर कुमार साहब की आवाज में. मूवी थी सत्ते पे सत्ता एंड आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव दिस फिल्म. बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं जो इतनी ज्यादा यू नो स्टार कास्ट भी जबरदस्त हो, कहानी भी अमेजिंग हो और हमेशा के लिए मेमोरीज में रह जाएं.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
1: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 और ईमेल info@seemamehtalawfirm.com।
0: दिल की बात किससे कहें?
2: पंडित गुरुदेव से। 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 4695811777। That's 4695811777. Pandit Gurudev, aaiye apni baat kahiye.
3: Stop! Festive fashion check. Navratri ke outfits ready hai?
4: Do chaniya choli hai. Mix and match kar lungi.
3: Fashion violation. Same outfit ko 9 raat overtime.
4: To solution?
5: Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Explore a stunning collection of stylish contemporary chaniya cholis for a new look every day in Navratri. Planning a wedding? Discover quality wedding and customized bridal wear for men and women at great prices. Call 945-444-21.

0: 94 or explore jyotikapateldesigns.com. Indian ethnic wear by Jyotika Patel, designed for celebrations.
1: ये तारा वो तारा हर तारा।
0: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
3: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Grow Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Grow Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
4: कितने आदमी थे?
5: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

Kids Junction on 104.9 FM Pan Asia Radio Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran Pe every Friday 3 till 4:30 PM और तमाम बच्चे मुझे कॉल कर सकते हैं अपने आपके रिक्वेस्ट मैं प्ले कर रही हूँ मेरे पास अभी बहुत सारी रिक्वेस्ट लाइन अप है आई एम गोना प्ले देम इन द सीक्वेंस दैट दे वर रिसीव्ड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स बच्चा पार्टी आई एम स्टिल हियर टेकिंग योर कॉल्स एंड व्हाइल आई प्ले दिस नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट नॉट यू बट योर पेरेंट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अबाउट finances it is time good time for you to learn as well guys that we have to make personalized strategies and make portfolios for ourselves we need to invest in real estate we need to make alternative investments and while we are getting older we need to invest in retirement planning as well and to do all these things there is my time equity led by CPA Sudhir By My Time Equity will guide you step by step and help you throughout this process to make your personalized strategies. So give them a call 469-702-1272. 469-702-1272 is that number. Ya phir you can visit the website mytimeequity.com. This one is a very interesting request taken from the movie Hum Saath Saath Hain. Enjoy.

Don't touch that dial. Keep listening.

0: We are heading on to a short break with this. I still have half an hour and then we'll go to Chiller Party. Stay tuned. Lots of fun.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
6: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
7: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
8: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
7: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
8: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
7: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी। फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
9: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
10: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
11: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
10: Jahan har flavor kare full on entertainment.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
8: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
7: कैसे?
8: पेज 3 ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
8: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोल्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
9: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
11: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
12: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
13: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
14: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
15: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
16: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
14: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
16: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
17: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids, all at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire Frisco, your divine destination for festive fashion.
18: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ, ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 PM. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
19: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में मैं किरण आपके साथ आधा घंटा और यानी के 5 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है. एवरी डे मंडे थ्रू फ्राइडे 2:30 PM टिल 5 PM आई एम हियर विद यू एंड एवरी डे आई ब्रिंग यू अ न्यू फ्लेवर. आज का फ्लेवर इज कंप्लीटली किड्स ओरिएंटेड एंड आई हैड एन एब्सोल्यूट ब्लास्ट चिट चैटिंग एंड हैविंग दिस को होस्टिंग सेशन विद सुवान. सो जी यू कैन बी हियर एज आई टोल्ड यू गो टू आर फनेशियस इंस्टाग्राम पेज एंड ऑन आर वीडियो इन द कॉमेंट बॉक्स राइट योर नेम योर एज योर ग्रेड एंड यू कैन बी आर नेक्स्ट को होस्ट फॉर चिल्लर पार्टी. अच्छा इट इज टाइम नाउ टू मूव ऑन एंड अगला गाना आपके लिए प्ले करते हुए आपको बताती चलूं कि फन एशिया नेटवर्क नाउ ब्रिंग्स इट्स मीडिया एक्सपर्टीज टू योर सोशल मीडिया विद रिलेटिव मीडिया. जी हाँ, फ्रॉम एंगेजिंग रील्स एंड ग्राफिक्स टू कैप्शंस, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज एम्पलीफिकेशन थ्रू फन एशिया रेडियो डिजिटल एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स. तो रिलेटिव मीडिया आपको देता है, आपके ब्रांड को देता है अ कंप्लीट कॉन्टेंट सोल्यूशन. यू हैव एनी क्वेश्चन और यू वॉन्ट टू बुक योर कॉन्टेंट टूडे or content audit today, give them a call 469-424-3188. 469-424-3188 is the number. This is Relative Media powered by Fun Asia Network. You are in the right hands.

what a beautiful video this song has. Sargun aur Ravi Dubey pe picturized ye video. The real life husband and wife and absolutely beautiful vibes jo inse aati hain. Aur Ravi Dubey to ab hame Lakshman ke character mein nazar aane wale hain Ranbir Kapoor ki aur ki film mein jo Ramayan ban rahi hai. Aur Sargun apne aap mein ek Punjabi industry ki ek bahut hi successful actress hain aur you know performer hain. To isi ke saath ab hum aage badh rahe hain. Main aapko dene lagi hu weather ki update. Today is October the 2nd, Friday, of course, 4:42 p.m. in the studio. Aur city of Mikini mein is waqt hai 76 degrees. It feels like 76 as well. Aur din raha, कहीं कहीं आपको गरज चमक के साथ बारिश नजर आई, कहीं कहीं फुहार नजर आई, वो बूंदाबांदी जिसे हम कहते हैं. 60% चांस ऑफ रेन रहा और मोस्टली क्लाउडी रहा दिन भी, और हाइज जो हैं वो अपर 70s में रहने वाले हैं, जबकि शाम रहेगी क्लाउडी विद अ चांस ऑफ शावर्स विद अ स्लाइट चांस ऑफ थंडरस्टॉर्म्स एज वेल. लोज इन द अपर 60s. पॉलन काउंट आज का 5, विच इज मीडियम. रैगवीड एंड एल्म इज वॉट इज बॉदरिंग वेयर पॉलन इज कंसर्नड. यूवी इंडेक्स इज 4, विच इज क्वाइट मॉडरेट. सनराइज आज का हुआ 7:21 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 7:09 शाम.

जी हाँ, इन्होंने तो रिक्वेस्ट डाल दी है, लेकिन उसके लिए करेंसी की अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है आज विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो आपको अपडेट देते चलें जी. राइट नाउ अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो ट्रेड कर रहा है 0.88 पे, जबकि ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.75. इंडियन रुपी 96.20 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि कैनेडियन डॉलर 1.42 पे स्टैंड कर रहा है. पाकिस्तानी रुपी 276.98 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर, जबकि 153.99 नेपाली रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर. और इसी तरह बांग्लादेशी टका 122.92 पे स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वन यूएस डॉलर. अब इस गाने के बाद जब हम वापस आएंगे तो आई विल टेल यू अबाउट द गोल्ड प्राइस अपडेट कि सोना आज किस भाव रहा.

एंड विद दैट इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द गोल्ड प्राइस अपडेट. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि अगर आपका जेवर शेवर खरीदने का मन कर रहा है जी, और कुछ आपने क्लासिक खरीदना है, ब्यूटीफुल गोल्ड डायमंड या फिर कोई रोजमर्रा की जिंदगी के जो जेवरात होते हैं, अंगूठी हुई, ब्रेसलेट्स हुआ, कड़े हुए, लॉकेट्स हुए, ये खरीदने हैं, या फिर शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, आपने ब्राइडल कलेक्शन खरीदना है, हर चीज के लिए PMJ Jewels इज हेयर फॉर यू. दे आर नाउ ओपन इन फ्रिस्को एंड दे आर ब्रिंगिंग with them 60 years of jewelry excellence with timeless Indian craftsmanship. Aap visit kar sakte hain PMJ Jewels ko. They are located on Main Street in Frisco. Aur bahut hi khoobsurat pieces hain inke paas. Main personally, I've been there and I absolutely love their pieces. Aur ab ek aapko badi hi interesting baat batate hain. Aaj hai 2nd of October. Aur the sparkle of New York Fashion Week is coming your way. Discover the chosen PMJ Jewels New York Fashion Week 2026 collection. और ये आपके लिए होगी कल, यानी कि अक्टूबर 3rd को at PMJ Dallas. तो कल लगेगी ये कलेक्शन जी. They will have, all the New York Fashion Week collection for you experience. Come on, experience exquisite jewelry that brings runway glamour to your world. This is a PMJ Jewels located on Main Street in Frisco. तो ये तो हुई ज्वेलरी की बात. अब आपको जेवर खरीदना है तो जरा जल्दी से गोल्ड प्राइस अपडेट भी बताती चलूं. गोल्ड प्राइस पर आउंस राइट नाउ इज $4,140.80, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत इस वक्त है $133.13. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $1.02 की कमी हुई, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $31.89 की कमी देखने में मिली. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन सुनहरी किरण.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
6: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
5: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में?
6: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
7: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
4: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
7: Barista House, richness of biryani bliss.
8: Beta, 95% आए?
9: हाँ मम्मी।
8: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
10: मेरा?
8: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
10: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: Dil ki baat kisse kahe?
12: Pandit Gurudev se. 35 saal se zyada ke experience ke saath, Pandit Gurudev karte hain kundali reading, birth chart analysis, palm reading और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 469-581-1777, दैट्स 469-581-1777। पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए।
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
16: कितनी लंबी लिस्ट है?
15: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
16: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
17: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide।

0: streaming services from India to the USA and worldwide. Visit sflworldwide.com.
1: अरे यार, घर मिल गया।
2: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
3: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
2: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी।
3: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
4: हाय, दिस इज विनय पाठक एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।
5: डालस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो।

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

0: I love the plan. Thank God it's Friday with me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart.
1: Thank God it's Friday. और Friday आ चुका है दोस्तों. Thank you so much tune in करने के लिए 104.9 FM Fun Asia Radio पर. और thank God it's Friday. दिल से आती है ये बात. और क्यों ना आए जब हम feel कर रहे होते हैं यार thank God Friday जो आ गया है हमारे इस week में. और वो weekend का जो vibe है थोड़ी जल्दी से drop in हो जाए तो वी थैंक गॉड वन मोर टाइम बिकॉज वी आर सो हैप्पी अबाउट द फ्राइडे. तो आई होप यू ऑल आर हैविंग अ लवली लवली टाइम. 104.9 FM फन एजर रेडियो सुन रहे हैं. मैं आपकी होस्ट नवनीता. थैंक यू टू किरण फॉर सच एन अमेजिंग शो. जो उनका शो आता है आज ही के दिन एवरी शो बिफोर माई शो. एंड थैंक गॉड फॉर हर बींग हियर ऑन द शो.

ब्यूटीफुल, ये तो वही बात हो गई, अक्टूबर 2 वाली बात। आते ही वही एक सवाल ऑटोमेटिकली याद आता है, राइट? विजय सलगांवकर और उसकी फैमिली उस दिन कहाँ थी? और बॉलीवुड ने भी डेट नहीं छोड़ी, फाइनली दृश्यम एग्जैक्टली आज ही रिलीज हुई है दोस्तों। अक्टूबर 2 का सिलसिला डेट टाइड अप टू सलगांवकर फैमिली फेमस एल्बम, और वो जो डेट है जो ट्रैक हुई है, और ये जो फाइनल दृश्यम की फिल्म आ रही है, ऑलरेडी डूइंग सो वेल ऑल ओवर इंडिया, मेकिंग अजय देवगन्स बिगेस्ट ओपनिंग थ्रू द फाइनल डे 1। नंबर्स विल सेटल लेटर, बट डायरेक्टर अभिषेक पाठक हैज ऑल्सो कन्फर्म दिस इज जनरली द एंड ऑफ द हिंदी फ्रेंचाइज। पहली बार आई थी, दूसरी आई दृश्यम, और ये कंक्लूजन है, इसके बाद और एक दृश्यम नहीं आने वाली, सुना गया है, यही बोला गया है, तो हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि इसी में आपको फाइनल क्या हो रहा है वो पता चल जाएगा। एंड लवली मूवी, वेरी वेरी वेल मेड। जब दृश्यम पहली वाली दृश्यम आई थी तो ऐसा था हमारे घर में जो भी आता था हम बस रिलैक्स किए, कुछ हुआ वो ओवरनाइट रह रहे हैं हमारे फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स कोई भी, देन वी वुड से चलो को मूवी देखते हैं, और हमारी फर्स्ट क्वेश्चन होती थी हैव यू वॉच दृश्यम, और वो उस समय वो पहली वाली दृश्यम थी तो बहुत लोगों ने दृश्यम नहीं देखी हुई थी, एंड वी वुड मेक इट अ पॉइंट टू मेक देम वॉच दृश्यम। ऐसा दृश्यम का वाइब था एंड एवरीबडी लव्ड इट, एंड दे टुक इट फ्रॉम आस कि हमने उन्हें दृश्यम दिखाई, सो हमने बहुत लूटा है उसका फेम उस समय। बट देन व्हेन दृश्यम 2 केम एवरीबडी वॉच दृश्यम 2 एंड नाउ इट इज अजय देवगन्स दृश्यम 3 वन मोर टाइम। सुपर है, चलिए अजय देवगन का ये गाना सुना जाए, बिकॉज आई जस्ट फील दैट ही डिजर्व्स दिस। ये हमारे सिंघम जो दृश्य में है।

0: सिंघम ने तो कमाल कर दिया। वैसे उमर ख्वाजा भी हमारे शहर में बहुत बहुत कमाल कर रहे हैं। द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा, कोई भी आपकी इंजरी हो, गाड़ी से हो, ट्रक से हो, या फिर स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट हुआ हो, दे आर द वंस हु कैन हेल्प यू क्लेम ऑल दैट यू नीड टू पे आउट ऑफ योर पॉकेट फॉर डूइंग योर ट्रीटमेंट्स एंड अदर डैमेजेस एज वेल, एंड दे आर नन अदर देन अटर्नी उमर टीम हु फाइट फॉर यू एंड यू पे नथिंग अनलेस यू विन। सो फोन उठाए, नंबर दबाइए 469-300-5046 और विजिट अटर्नी ओमार डॉट कॉम। एंड दिस ट्रैफिक अपडेट इज़ ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा। ट्रैफिक की तो हाल ऐसी है कि डिजेबल्ड व्हीकल नज़र आ रहा है 114 पर एट टारंट एंड डैलस काउंटी इन लाइन ईस्ट बाउंड डिजेबल्ड व्हीकल है, एंड जिसकी वजह से यू हैव ब्लॉकेज। जस्ट रिमेंबर इफ़ यू आर गोइंग दैट साइड एंड यू हैव फेसिंग लिटल बिट ऑफ ट्रैफिक, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। एंड कोलिजन हो चुका है I-20 एंड हिराम रोड वेस्ट बाउंड पे, इट इज़ टू एंटायर लेन्स आर ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन, सो देयर एज वेल यू कैन गेट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। सो मैं हूँ आपकी होस्ट नमिता, ये वाला गाना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है टू प्ले इट फॉर यू, because this song is in information that I had given to you a few days back about a film that is going to be released, aur wo release jo hai is gaane ke sath aa jaye, aur us
1: heere moti main chahu।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो, या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problem solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal, call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
5: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
6: That garba was totally worth it. We had so much fun.
7: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
6: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
8: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
9: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly?
3: The death of an owner can create serious challenges for a business. From ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
9: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. H-E-B mein. Sona Masoor. राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही एचईबी के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए एचईबी के नए डीएफडब्ल्यू स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी एचईबी पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। एचईबी, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
10: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
11: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
10: Miss Clicks?
12: 100 लोगों ने click भी किया.
10: Customers कितने आए?
13: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
14: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia Network product.
0: नमस्ते, सलाम अलैकुम, सस्रियकाल, कैमो नाचो, केम छो, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर। वैसे किसी ने बहुत ही खूब कहा है, कहा बड़ा नायाब रिश्ता है उनका और मेरा, ना मैं शामिल हूँ उनके अपनों में, ना वो शामिल है मेरे गहरों में। वाह वाह वाह वाह, दिल से दिल की बात दिल तक पहुंचे तो लगती है ठाएं। एंड आई जस्ट फेल दिस वाज, ओ माय गॉड, कितना अपनापन है इस ब्यूटीफुल लाइंस में। पर ये गाना जो आपके लिए प्ले कर रही हूँ, दिस इज़ सपोज टू बी सच अ कूल फिल्म, बट इससे अच्छी बात ये है अरिजीत सिंह की आवाज़ है इस गाने में। कैन यू बिलीव इट, अरिजीत सिंह जो प्लेबैक सिंगिंग छोड़ चुके हैं, बट दिस मूवी, टू वीक्स बैक आई हैड टॉक्ड अबाउट पहला प्यार दूसरी बार, ये फिल्म आने वाली है। और पहला प्यार दूसरी बार कैसे हो सकता है, और आप लोगों ने बहुत अमेजिंग आंसर्स दिए थे इसके। बट इस पहला प्यार दूसरी बार का म्यूज़िक रिलीज़ हो चुका है और उसमें अरिजीत सिंह की आवाज़ है। सो देयर यू गो, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ट्रीट, द फिल्म एज वेल एज द सॉन्ग।

ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, राइट? पहला प्यार दूसरी बार फिल्म से, वो पुराने दिन इज द सॉन्ग्स नेम. और ऐसा ही होता है ना, उन दिनों में कुछ तो बात थी. स्कूल डेज, फर्स्ट क्रशेस, फ्रेंडशिप्स, लिटिल मोमेंट्स दैट स्टे विद अस. रौचक कोहली ने इसे कंपोज किया है. अरिजीत सिंह की तो आवाज़ पहचान में ही आ रही है. कुमार ने गाने को लिखा है. और लव रंजन की ये भी फिल्म हमारे दिल को छूने वाली है. कोई ना कोई इसमें बड़ा बनने वाला है, बिकॉज ही रियली डज मूवीज़ ऐसे ही. प्यार का पंचनामा ने बना दिया है था कार्तिक आर्यन को. एंड वी सॉ हिम इन सोनू के टीटू की स्वीटी, प्यार का पंचनामा 1-2 दोनों बनी थी. तू झूठी मैं मक्कार, उसमें उन्होंने वैसे रणबीर कपूर को लिया था. बट दिस वन अगेन न्यू बीज, पहला प्यार दूसरी बार. एंड आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल्सो अ फिल्म दैट वी विल लव वॉचिंग एंड प्रॉब्ली ग्रोइंग विथ एंड लविंग सम ऑफ द स्टार्स, बिकॉज लव रंजन ब्रिंग्स आउट एक्टिंग टू द फुलेस्ट. मज़ा आ गया गाना सुन के, एंड अरिजीत की आवाज़ फिर से सुन के. ये अगला जो गाना है ना, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल है और विशाल मिश्रा की आवाज़ है. ओ माय गॉड, राजकुमार राव की फिल्म प्रहार मेरे रहते, उसके बारे में हम बात करेंगे इस गाने के बाद.

फिल्म का नाम है प्रहार, और ये गाना 2 दिन ही पहले रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज इसका ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम, और ये प्रहार के उज्जवल निकम प्ले कर रहे हैं राजकुमार राव एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम इन द कोर्ट रूम ड्रामा अबाउट द लीगल प्रोसीडिंग्स फॉलोइंग द 26/11 मुंबई अटैक्स। ट्रेलर फोकसेस पार्टली ऑन द प्रोसिक्यूशन ऑफ अजमल कसब एंड द डिस्प्यूट ओवर हिज क्लेम्ड एज। और ये फिल्म फीचर कर रहा है वामिका गबी भी, और ये रिलीज होने वाली है अक्टूबर 16 को। राजकुमार राव की तो स्ट्रेंथ ही यही है ना, स्त्री में आपको हंसा देंगे, और एक दूसरी ही फिल्म में कंप्लीटली ही डिसअपियर्स इनटू अ सीरियस रियल लाइफ कैरेक्टर। प्रहार लुक्स लाइक वन ऑफ हिज मोस्ट इंटेंस रोल्स दो। और ये जो गाना आपने अभी अभी सुना है, इट इज़ फ्रॉम द फिल्म प्रहार, 2 ही दिन पहले रिलीज़ हुई है। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, विशाल मिश्रा की ही आवाज़ है, म्यूज़िक भी विशाल मिश्रा ही ने दिया है इस गाने में। सो या, विशाल मिश्रा इज़ कमिंग अप क्या, ही हैज़ बिन हियर अराउंड एंड ही हैज़ डन सम रियल रियल गुड वर्क, एंड आई रियली फील ही इज़ गोइंग टू राइज मच मच हाई। वन ऑफ 4.9 FM, फनी रेडियो सुन रहे हैं आप।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
8: कीमा पराठा।
9: मम्मी, ऑमलेट पराठा।
10: बेटी, हलवा पूरी और तरकारी।
7: अब संडे को 3 अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
0: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99। अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड। विजिट signaturecuisine.net.
11: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
12: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
13: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
14: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
15: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
16: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
17: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
16: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
18: यू नो माई वॉइस ऑन द रेडियो, नाउ लेट मी बी अ वॉइस यू कैन ट्रस्ट इन रियल एस्टेट। मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। बाइंग, मूविंग और सेलिंग अ होम, आई ब्रिंग मार्केट नॉलेज, क्रिएटिव मार्केटिंग एंड पर्सनल

0: commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
1: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
2: Phone uthaye, number dabaye.
0: 347-449-4242.
3: एलविंग वालो ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं हिंट है. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
4: Subha Drive Pe.
5: You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio.
6: Dopahar phone par.
7: I don't listen to Spotify, I listen to Funny Share Radio.
8: Sham ko ghar par.
9: You are listening to Fun Asia Radio.
10: Your customers are listening.
11: पर क्या आपके बिजनेस की आवाज उन तक पहुंच रही है?
12: Business, products या services. Let Dallas hear about you. Advertise on Fun Asia Network in Hindi, Tamil, Telugu or Punjabi. And connect with your customers in their own language.
13: From radio spots to live RJ mentions, let your business become a familiar name on their favorite station.
12: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
13: Fun Asia Network. Be heard, be remembered, be chosen.
14: Hope you're having a lovely, lovely time on this Friday evening. Fan se aad, straight from the heart. Dosto, thank you tune in karne ke liye इस रेडियो स्टेशन पर और फन एशिया नेटवर्क को इतना प्यार देने के लिए. इतने सारे एक से एक हम ब्रांच आउट होते गए हैं जस्ट बिकॉज आपका प्यार इतना मिला है. फन एशिया को तो आप जानते ही हैं, लेकिन हमारे तेलुगु पॉपुलेशन के लिए वी हैव रेडियो संगम, जिसे बहुत प्यार दिया जा रहा है. एंड द तेलुगु रेडियो इज़ डूइंग अमेजिंगली वेल. वनक्कम FM है जो तमिल रेडियो स्टेशन है, विद ऑल द म्यूजिक एंड ऑल द कॉन्वर्सेशन द आरजेज डू इन तमिल. अपना पंजाब, द पंजाबी रेडियो स्टेशन विच यू लव सो मच, रेडियो कारवा विद आवर सिस्टर. हिंदी म्यूजिक जो फनीजा हिंदी है, आप दोनों जगह सुन सकते हैं रेडियो को. और अगर आपको इस रेडियो पर, कोई भी रेडियो पर, हमारी जो सारे पॉपुलेशन है उन्हें रीच आउट करना है विथ योर बिजनेस, ज़रूर फ़ोन उठाएगा, नंबर दबाएगा, बताएगा हमें. और वी विल लव टू हैव यू ऑन आर रेडियो, प्रमोट योर बिजनेस सो दैट इट इज़ हर्ड एवरीवेयर. Whoever wants to advertise on Funisha Radio. वैसे मेरा नंबर है 347-449-4242. You can always reach out for that. And here we have this brand new songs जो अब मैं प्ले करने वाली हूँ आप लोगों के लिए. दोस्तों पता है ना, ये नया गाना कभी टाइम लगता है उसे समझने में, और जब अच्छा लग जाए ना तो उसके लिए वो भी होता है कि वो रिपीट में सुना जाता है. नए गाने को जब पेश किया जाता है सो इट माइट जस्ट गो लाइक मिस फायर हो जाए कि आपको समझ ही नहीं आए. एंड यू लाइक ओ इट्स ओके, नेवर वॉन्ट टू हियर इट बैक. बट सम सॉन्ग्स यू जस्ट वॉन्ट टू हियर इट बैक अगैन एंड अगैन एंड अगैन. लेट्स सी, कुछ गाने सुनते हैं जो ब्रांड न्यू हैं, हम डिसाइड करेंगे बार बार सुनना है कि नहीं, है ना. चलिए सुनते हैं.

रेखा भरद्वाज की आवाज़ तो आपने समझ ही ली होगी, सच ब्यूटीफुल शायद इज़ द सॉन्ग नेम। और ये रेखा भरद्वाज की बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज़ और बहुत लेजेंडरी रही हैं ये, विद सो मच टू ऑफर थ्रू आउट हर लाइफ, रेखा भरद्वाज विद सो मेनी डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ हर सॉन्ग। एंड हमारे शहर में आई थी, शी डिड अ शो एंड वी हैड द वी वर ऑब्लिज्ड टू वॉच हर प्रिविलेज, और या वेरी गुड परफॉर्मर एज वेल। वैसे परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे शहर में सीमा मेहता लॉ ऑफिसर्स हैं हु हैव परफॉर्म्ड एंड आर परफॉर्मिंग फॉर सच सच अ लॉन्ग टाइम एंड दे डू अ वंडरफुल जॉब। एंड इफ यू आर ऑन एन H-1B, F-1, L-1 ऑन एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एंड प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प यू ऑलवेज। अटर्नी सीमा मेहता की जो एक्सपीरियंस है, उनकी टीम जो है, दे स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 विजिटर वीज़ाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज, परम लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप। और भी अधिक जानकारी चाहिए ऑन EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम, आप ईमेल कर सकते हो उन्हें info@seemamehtalawfirm.com, दैट्स info@seemamehtalawfirm.com, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता। 104.9 FM फनीजा रेडियो सुन रहे हैं। वैसे मैं चाह रही थी कि आपको ये बता दूं कि आज तो ये झेरू राम ने किया क्या है, और फिर सोचा कि हर बात तुरंत ही बता दिया जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, सो इसलिए मैं गाना बजाने वाली हूँ और उसके बाद जब आने वाली हूँ तब बताने वाली हूँ कि झेलू राम ने किया क्या है, और ये गाना आपके लिए।

0: मुझे बहने दे।
1: Beautiful, मुझे बहने दे, this one in the voice of Arijit Singh, मुझे बहने दे, and the film is one that has had released last week, Siddharth Malhotra और Tamanna Bhatia की film. वैसे दोस्तों, I'm very very happy and proud to be a real estate agent with Keller Williams, and I love doing this. बहुत मज़ा आ रहा है मुझे लोगों को घर दिखा के, उनके dreams को सच बना के. वैसे एक listing के बारे में मैं हमेशा बता रही हूँ, these are hard times selling homes really. और सलाइना में तो बहुत खूबसूरत घर है, एंड अ लॉट ऑफ न्यू वंस विच आर बीइंग बिल्ट, एंड आई हैव बीन एडवर्टाइजिंग दिस वन बिकॉज माय सेलर इज़ रीलोकेटिंग. इसी वजह से ये प्रॉपर्टी इज़ रियली बेटर देन अ न्यू होम बिकॉज दिस वाज बॉट इन जनवरी एंड ऑलरेडी इन द मार्केट टू सेल बिकॉज ही इज़ रीलोकेटिंग. और प्राइसिंग इज सुपर डुपर बेटर देन अ न्यू होम विच द बिल्डर्स आर गिविंग. बहुत सारे डिस्काउंट्स है. दे ऑल्सो गिविंग 20,000 फ्लेक्स कैश विच यू कैन यूज इट फॉर क्लोजिंग कॉस्ट, फॉर गेटिंग अ मोर्गेज पेमेंट्स डाउन. एंड उनके पास ब्रैंड न्यू फर्नीचर है विच इज़ हार्डली बीन यूज बिकॉज द सेलर वाज ट्रैवलिंग. मोर देन $35,000 के ब्रैंड न्यू फर्नीचर. सो ऑल दैट ही इज गिविंग एब्सोल्युटली फ्री टिल संडे नाइट 9 o'clock. अगर कोई भी आता है, मूव इन रेडी होम, ब्रैंड न्यू, हाई एंड अप्लायंसेस भी है विच आर लाइक कफे अप्लायंसेस एंड अदर्स एंड एवरीथिंग गोज़ विद द होम फ्री. वेरी ब्यूटिफुली प्राइस्ड, वेरी नाइसली. अगर आपको इसकी इसको देखना है, जानना है इसके बारे में और मूव इन करना है, कोई मूव इन हो रहा है डैलस फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट, दे कैन ऑल्सो कम इन 972-235-5555. अभी यहाँ पर स्टूडियो का नंबर है, वैसे माई नंबर 347-449-4242. जस्ट गेट इन टच विद मी, यू कैन टेक अ टूर एंड आई नो यू विल फॉल इन लव विद दिस होम. इट्स अ गॉर्जियस गॉर्जियस होम. आप मुझे सुन रहे हैं नवनीता को विद केलर विलियम्स रियल्टी, बिकॉज एवरी होम हैज अ स्टोरी. लेट मी क्रिएट योर्स एंड वी विल क्रिएट इट टुगेदर. 104.9 FM फनीजा रेडियो. फ्राइडे की शाम आपका मेरा साथ. थैंक यू साथ देने के लिए.

0: का खेल, झूठे पर सूट का खेल, सच और झूठ का खेल, कच्चे सबूत का खेल, सच और झूठ का खेल, हाँ कैसी है लूट मचे, सच और झूठ का खेल, ये कच्चे सबूत का एसेट।
1: गेम ओवर, तुझे तो सब की खबर है, अगर मगर है, सफर में सफर है, कांटे की डगर है, हर कदम कवर है, हर जगह मर्डर है, सामने कोनी है, जाकर अब अगले रह गया, अकड़ में नहीं आया, पकड़ में कैसी दिनचर्या के, ये कल पे पत्थर है, जनवरी शक्कर आया, अक्टूबर है, मुक्की और थप्पड़ नहीं, दिमागी टक्कर है।

वाओ, दिस वन द कंक्लूजन. अजय देवगन, अक्टूबर 2, क्या होगा, पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे. बट जो भी हो, अभी तो ये देखिए झेलू राम की हरकत, एंड यू विल बी सो सो फनी ही इज. तो एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि उर्दू के अध्यापक ने एक सवाल किया कि नाकाम इश्क और मुकम्मल इश्क में क्या फ़र्क है, उर्दू के प्रोफेसर. ऑल राइट, हमारे झेलू राम कहते हैं, नाकाम इश्क बेहतरीन शायरी करता है, गज़ल गाता है, पहाड़ों में घूमता है, उम्दा शराब पीता है. वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे झेलू राम. और मुकम्मल इश्क, वो झेलू राम कहते हैं, और मुकम्मल इश्क सब्जी के साथ मुफ्त धनिया लाने, रास्ते से ब्रेड लाने, दाल में नमक कम या ज्यादा बताने, और संडे को पंखा साफ करने में ही दम तोड़ देता है. जो दूसरा वाला है ना, मैं हूं, मेरा जो इश्क हुआ ना मुकम्मल हुआ. जीरो राम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट हैव यू डन, क्या खाया है आपने, कुछ वो सारे जो धनिया जो मुफ्त में आप जो झगड़े होते ना, इसीलिए हो रहा है आपके साथ ऐसा.

द रेवोल्यूशनरीज और आएंगे. दिस द सॉन्ग अक्षदीप सेन गुप्ता और सुखविंदर सिंह एंड दिस वन इज अ ब्रांड न्यू वन फॉर ऑल ऑफ यू 104.9 FM. फनी झरीले सुन रहे दोस्तों. और बताएं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि फनी एशिया नेटवर्क आपके लिए लेकर आ रहे हैं मीडिया एक्सपर्टाइज टू योर सोशल मीडिया विद रिलेटिव मीडिया. रिलेटिव जो है इंगेज करता है रील्स के साथ, ग्राफिक्स के साथ, कैप्शंस लिखकर, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशंस के साथ थ्रू फनीजा रेडियो. डिजिटल एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स में रिलेटिव मीडिया गिव्स योर ब्रांड कंप्लीट कंटेंट सॉल्यूशन. और आप कोई भी ब्रांड बना रहे हो, इसमें बहुत डिफरेंट पैकेजेस हैं. सोशल मीडिया की पहुँच बहुत है, बहुत ज़्यादा है. और फनीजा नेटवर्क ने पहचान लिया है कि रेडियो की तो पहुंच है आप सब तक, लेकिन और भी दूर दूर तक पहुंचना है आपको. बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्राउजिंग दैट वी डू ऑन आवर फोन्स, आवर इंटरनेट्स, एआई के अराउंड कि हमें ये सब रील्स के द्वारा आपके ब्रांड्स को जगह जगह और भी पहुंचना चाहिए. तो आज ही बुक कर लीजिए, यू नो, कॉल कीजिए 4694243188 टू बुक योर कॉन्टेंट ऑर्डर टूडे. रिलेटिव मीडिया पावर्ड बाय फन एशिया नेटवर्क, इट इज़ अ नेक्स्ट लेवल ब्रांडिंग जस्ट फॉर यू. आप ट्राई तो करके देखिए. दैट इज़ रिलेटिव.

वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फन एजर रेडियो। किसी ने कहा है, हम झूठों के बीच सच बोल बैठे। ओह माय गॉड, हम झूठों के बीच सच बोल बैठे। वो नमक का शहर था और हम जख्म खोल बैठे। वाह वाह, दिल से दिल की बात दिल तक पहुंचे तो लगती है ठाई। एंड आई होप ये वैसी वाली थी ठाई। बट दिस ठाई ठाई सॉन्ग विच आवर वेरी ओन आलिया भट्ट हैज मेड, लेट्स गो ओवर दिस वन। शी एंड हर लिटिल सिस्टर रे बावरी।

वाह, पता है ये डैलस फोर्ट वर्थ आप सुन रहे हैं ना? अ पावर पैक्ड एक्शन फिल्म हैज अराइव्ड एट अ थिएटर नियर यू। आचार्य है नाम, स्टारिंग नेपाल सुपरस्टार निखिल उप्रेती अलोंग साइड पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर्स। दिस एक्शन फिल्म ब्रिंग्स यू अ स्टोरी सेट अलोंग द इंडिया नेपाल बॉर्डर विद एक्शन दैट टेक्स टू द नेक्स्ट लेवल। And here's what makes it even more special: the film is in Hindi and Nepali with English subtitles. So आप पूरे फैमिली के साथ पहुंच जाइए, दोस्तों के साथ गैंग बना के पहुंचे और सारे के सारे मिलकर एंजॉय कीजिए एक साथ। And Nepali friends have watched and loved Hindi films for years. Now it's our turn. हमें भी different फिल्मों को we have to respect that and enjoy it with our friends. So it is our turn. Let's show a Nepali film that same love and support. That's what has come from the Nepali crowd's heart. कि यार हमें भी देखो, हमें भी समझो कि हम क्या लेकर आ सकते हैं। आचार्य फिल्म है, is now showing at Cinemark Hearst at Northeast Mall and Cinepolis Ulis. ये दोनों जगहों पर है। बुक योर टिकट्स ऑन फिंडांगो और विजिट 7seas.film। वंस अगेन 7seas.film नाम है, आचार्य फिल्म का नाम है, आपके ही शहर में है। आप इस फिल्म को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और मिस मत कीजिए। गो वॉच इट बिकॉज व्हाई नॉट, है ना? सुपर सुपर यार।

पिसा पिसा धमाल फोर से सारी गाने का नाम है। संजू राठौर जिनको आपने सुना है और भी गानों में, तनिष्क बागची का म्यूज़िक और इसमें रितेश देशमुख एंड अंजलि, अरशद वारसी, जावेद एंड अजय देवगन, यू नो धमाल फोर, ऑल द हिलेरियस कैरेक्टर्स। बट कैरेक्टर्स से मुझे एक बात याद आई, बॉलीवुड बज, कॉफ़ी विद करण कौन कौन देखते हैं? आई मीन हर साल एक कॉफ़ी विद करण, विद करण जौहर की कॉफ़ी, और ये कन्फर्म हो गया है कि ये सीज़न 9 है, विल बी द लास्ट एंडिंग रन दैट बिगेन इन 2005। यार कितने बार ऐसी उड़ती हुई खबर आई कॉफ़ी विद करण बंद हो जा रहा है, बट ये लास्ट हो रहा है, सुनने में आ रहा है दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड द फाइनल सीजन प्रीमियर्स फ्रॉम अक्टूबर 14 ऑन जियो हॉटस्टार। करण सेज ही वांट्स टू डिवोट मोस्ट ऑफ द नेक्स्ट फेज ऑफ हिज करियर टू डायरेक्टिंग फिल्म्स, एंड करीना कपूर खान एंड सैफ अली खान आर बीइंग रिपोर्टेड एज वन ऑफ द रिटर्निंग पेयर्स, बट द कंप्लीट ऑफिशियल गेस्ट लिस्ट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड। So treat other guest names as a buzz for now. No more coffee, यार ऐसा होता है क्या? 22 साल तक rapid fire gossip सुना हमने, confession सुना, बहुत सारी controversies हुई इस coffee के around. करण वो कप वापस नीचे रख देंगे अब नहीं वापस उठाएंगे? अब सवाल है final season में वो one guest कौन होना चाहिए जिसके बिना शो ख़त्म ही नहीं हो सकता? बताइए कौन हो जिसके बिना शो ख़त्म ही नहीं हो सकता कॉफ़ी विद करण में? बट एक उड़ती उड़ती खबर मेरे को कान में और भी आई है, आई डोंट नो इफ इट इज़ ट्रू और नॉट, बट आई हैव हर्ड द किंग खान एस आर के एंड हिज सन नारियन खान आर ऑल्सो गोइंग टू फीचर। आई थिंक दैट विल बी वंडरफुल टू हैव द किंग खान एंड द कब खान विच इज़ Aryan Khan, and I have always watched diligently Coffee with Karan. I have actually enjoyed all those gupshup over coffee, and I have the filmy kira in me every time, and I just love watching these celebrities aur unki jo baatein hoti hain. You know, dimag ko side mein rakho aur phir dekh lo, and uske baad kisko lagana hai dimag, right? That's why we have our Jhelu Ram. हम दिमाग थोड़ी लगाते हैं, जो झिलराम बोलते हैं जो बोलते हैं सुन लेते हैं और फिर साइड में रख देते हैं। दैट्स हाउ इट इज़। बट यू टेल मी हु हैज़ टू बी, यू वुड लव टू सी दिस कॉफ़ी विद करण। तो मैं पहुंचाऊंगी ना एक छोटा सा बज बी टू करण जौहर, एंड आई विल टेल हिम हेलो, कैन वी गेट हिम एज़ वेल।

0: पहला प्यार दूसरी बार ही फिल्म का नाम वंस अगेन, जुबिन नौटियाल की आवाज, प्यार मांगा है तुम्ही से, अब ये मांग।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन,
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG